0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
2: एक बारी सिकंदर हमारे मुल्क में आया। सिकंदर का नाम तो जानते हो आप, अलेक्जेंडर। अब ये सिकंदर हमारे देश में आया, ये सिंधु नदी से पार किया इसने, सिंधु दरिया था। तो वहां पार करते ही एक साधु बैठे हुए हैं वहां पर। तो पहले साधु जंगलों में आम मिला करते थे, क्योंकि साधुओं की गिनती बहुत हुआ करती थी पुराने जमाने में। लोग शांत थे, जो शांत रहता है उसको साधु बनने में कोई मुश्किल नहीं है। अब अशांत आदमी कभी भी परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलता। ज्यादातर लोग इस बात के लिए दुखी रहते हैं कि महाराज जी मन नहीं लगता, पानी जपते हुए भी मन नहीं लगता, नाम जपते हुए भी मन नहीं लगता, भगवान भगवान करते हुए भी भगवान की तरफ मन नहीं जाता। क्यों? कारण उनसे पूछो, कारण क्या है? पहले तो वो बोलते हैं जी पता नहीं जी, कृपा करो। तो उनको कारण भी नहीं पता। चलो किसी आदमी ने, सियाने आदमी ने कारण बता भी दिया कि कारण क्या है, क्यों नहीं लगता, तो बोलेगा महाराज जी मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अब उसको कौन समझाए कि मन जो है ये कैसे करेगा? ऐसे नहीं कर सकता आप, भगवान की बात ऐसे नहीं कर सकते, भगवान की बात सुन भी नहीं सकते ऐसे। जब तक भगवान आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, सोचिए जरा, आप यहां आए हो और यहां आराम से बैठे हो। आप यहां आए नहीं हो, आप आए हो ये हम सोच रहे हैं कि हम आए हैं। पर कुछ लोग ऐसे लोग यहां जागे हुए पुरुष लोग बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग, सियाने लोग, रब के साथ जुड़े हुए लोग, आत्माएं बैठी हुई हैं, उनसे पूछेंगे कि आप आए हो, बोलेंगे नहीं, हमें तो परमात्मा ने बुलाया है। देखिए एक ही आदमी दो तरह की सोच लेके बैठा हुआ है। ज्यादातर लोग यहां बैठे हुए हैं उनसे पूछेंगे आप आए हो, हां जी हम आए हैं। उनको पता नहीं है कि हमें बुलाया गया है, बिकॉज दे डोंट नो। उनको लगता है वो खुद आए हैं, क्योंकि वो जुड़े नहीं हैं। उनको क्या, कैसे आए? उन्होंने कोई मेरा सत्संग सुना, अच्छा लगा, किसी ने कहा वहां जाके दुख खत्म होते हैं, अच्छा दुख खत्म होते हैं, चलो। दुख खत्म करने के लिए कौन नहीं जाता? वैष्णो देवी तक पहुंच जाते हैं लोग, 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पैरों में पड़ जाती हैं छाले, फिर भी चलते हैं, जय माता दी हो रहा है। अब आदमी पूछे किसी से कि ऐसे क्यों? सुख चाहिए? माता से क्या चाहिए? माता से कुछ नहीं चाहिए, माता से सुख चाहिए। थोड़ा सा कष्ट हो भी जाएगा तो ठीक है, चलेगा। कारण सुख का है। तो क्या हुआ, उस साधु को सिकंदर ने देखा कि साधु चुपचाप से बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, और उस साधु को सिकंदर ने देखा और भागकर मत्था टेकने के लिए अपने रथ से अपने घोड़े से उतरे, उतरकर और मत्था टेका साधु को। सिकंदर धार्मिक प्रवृत्ति का था। सिकंदर की माँ बड़ी सियानी थी। सिकंदर को हमेशा उसकी माँ ने चलाया। माँ बहुत ज्यादा सियानी होने के कारण माँ उसको पल पल पल पल पल पल उसको धार्मिक प्रवृत्ति की थी माँ, और उसने भी धर्म की उसके अंदर भी रख दिया। यूनान में भी बड़ा धर्म है, क्योंकि यूनान का एक सिस्टम है। यूनान कब से हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जब से महाभारत हुई। ये अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु की जो पत्नी थी शायद वो यूनान से थी, यूनान की राजकुमारी थी ग्रीस की। तो उनका जो पुत्र था वो बाद में हमारे देश का राजा बना। क्या नाम था उसका, परीक्षित। परीक्षित का पुत्र जनमेजा है, राजा जनमेजा, जिसने धरती पर कलयुग आया। उसकी भी मैं कथा आपको सुना, कलयुग कब आया संसार में उसकी मैंने सुनाई हुई है कथा आप लोग, कलयुग कैसे प्रवेश किया। तो सिकंदर एक धार्मिक राजा होने के कारण वो साधु को मत्था टेकता है और साधु से कहता है कि साधु ये महापुरुष मुझे आशीर्वाद दो कि जिस कारण से मैं भारत आया हूं वो मेरा कारण पूरा होना चाहिए। तो साधु ने कहा, वो आंख बंद करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि राजन तुम कौन से कारण से आए हो भारत।

0: कारण बता दो खुल के। उन्होंने कहा मेरा कारण है भारत में आने का, मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं, भारत को जीतना चाहता हूं, भारत के लोगों को जीतना चाहता हूं।
1: अच्छा
0: अभी क्या करना चाहते हो? बोले अभी एक राजा है यहां पर, उसको जीतूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए मैं जीत सकूं। उसके बाद बोले उसके बाद मैं दूसरा राज जीतूंगा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां करते मैंने इस भारत पर विजय प्राप्त करनी, इस भारत को जीतना है। बोले अच्छा फिर क्या करोगे? अब आपको कोई पूछे कि आप पैसे कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, किस लिए? सुख के लिए? किस लिए कमा रहे हो? सुख मिले, घर में पैसा आएगा सुख आएगा, नहीं आएगा पैसा तो सुख भी नहीं आएगा, सोच तो यही है। राजा ने भी, सिकंदर ने भी कहा कि मैं तो संसार जीतना चाहता हूं, तो आशीर्वाद दीजिए मैं दुनिया जीत जाऊं, भारत जीत जाऊं। बोले भारत जीत के क्या करोगे? बोले मैं भारत जीत कर बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा, फिर क्या होगा? फिर सोचने लगा, सोचते सोचते कहता फिर मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं आराम करूंगा। बोले इतना सब कुछ मारने मिटाने के बाद, इतने राजाओं को हराने के बाद, इतनी फौज मारने के बाद, इतने लोगों का कत्लेआम करने के बाद भारत जीतोगे और भारत जीतने के बाद तुम आराम करोगे? राजा ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर तुमने इतना घूमकर आराम करना है तो फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूं रास्ता आराम करने का। आओ मेरे साथ यहां बैठ जाओ, मैं भी आराम ही कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आराम कर। सिंपल मेथड, आराम ही करना है अगर इतना सब कुछ इकट्ठा करने के बाद, तो फिर पहले ही आराम कर लो, पहले ही उस पर पहुंच जाओ, आराम को प्राप्त करो, तो क्यों इतना थाम छाम? हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है, उस सोच से वो परेशान है कि मैं बड़ा बनूं और मैं कुछ करूं। अब कुछ करूं, उसे यह पता नहीं है कि मैं करना क्या चाहता हूं, पर वो ये जरूर कहता मैं कुछ करूं। एक बीबी कल मुझे कहती, अमेरिका में वो रहती है, वो मुझे कहती कि महाराज जी मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे को कहती अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या महाराज जी कितना सब कुछ लेके, मतलब ये दे कर, ये दरबार, हम दरबार की बात कर रहे थे, अमेरिका में हम दरबार लिया हमने, तो उस बच्ची, उसका फोन आया, बोली मेरे पास महाराज जी धन नहीं था, उसने सेवा दी अपनी, ऐसा नहीं है नहीं दिया, बट वो चाहती थी मैं और ज्यादा दूं, तो मुझे कहती महाराज जी मैं गरीब सेवक हूं आपकी, मैंने आपकी सेवा में मैंने बहुत सोचा था मैं बहुत कुछ दूंगी, और भी देना चाहती हूं, आप मुझे अमीर बनाओ ताकि मैं सारे दरबार आपके लिए खुद ही खरीद के आपको दे दूं। मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम अमीर बनना चाहती हो? बोली हाँ। तो मैंने एक अमीर औरत की उसको मिसाल दी, वही रहती है वो अमेरिका में, तो उसके पास बड़ा पैसा है, तो मुझे उसी ने कहा कि महाराज जी उसके पास बहुत पैसा है तो वो बहुत धनवान है वो। मैंने कहा उसके पास पैसा है पर उसके पास दिल नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, और तेरे पास पैसा नहीं है तेरे पास, अब बता तुझे क्या चाहिए दोनों में से? एक कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे, जैसे भाव हो जाता है कि ये कर दूं मैं वो, हमें पता ही नहीं कि हमने करना क्या है। अगर मान लीजिए हम ये सोचें कि हम अपने आप को खुश करें, मैं खुद को खुश कर रहा हूं, कभी मैंने ये सोचा है कि दूसरे मेरे से खुश हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये भी कभी सोचिएगा कि आपके आस पड़ोस वाले आपसे खुश हैं, ये संगत आपसे खुश है कि नहीं खुश, ये भी सोच लीजिए। होना तो ये चाहिए कि जहां मैं जाऊं वहां लोग मुझे पसंद करें, और जहां मैं जाके बैठूं वहां सब लोग मुझे पसंद करें, मुझे सब कहें आहा आप जैसा कोई नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसी ऐसी कृपा हो। पर मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं लोगों के साथ रहकर खुद को खुश करना चाहता हूं, पर मैं ये नहीं सोच रहा कि खुद खुश हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे से तो लोगों को खुश होना चाहिए कि लोग मेरे से खुश हैं कि नहीं। इस बात को छोड़ो, लोगों को तो बहुत दूर की बात है, आप पेड़ पौधों से पूछो ये पेड़ पौधे आपसे खुश हैं कि नहीं हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे इतनी संवेदना इनके अंदर इतनी जागी हुई है, ये आपके चलने के भाव से ही पहचान जाते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और उसी से पकड़ लेते हैं आपकी प्रक्रिया को, आपके आभा मंडल को, आपके विचारों को, और तुरंत वैसे ही आपके साथ वातावरण करना शुरू कर देते हैं। पेड़ आपसे मुरझा जाते हैं, पेड़ आपसे खिल जाते हैं। आप ये भी कभी सोचिए पेड़ पौधे भी आपसे खुश हैं कि नहीं हैं, कभी सोचा? हाँ, कहां सोचेंगे, इतना लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत क्या है, आपको पड़ी भी नहीं हुई। बोले कौन सोचता है, पेड़ पौधों को कौन देखता है, ये पेड़ पौधे हैं जो आपको हवा देते हैं, अगर ये हवा देना बंद कर दें, आपको सांस देना बंद कर दें, दमे की शिकायत तभी होती है, सांस लेने की मुश्किल तभी होती है, सांस आ रहा है पर सांस लिया नहीं जा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है, ये कारण ही है कि पेड़ पौधों ने मुंह मोड़ रखा है। सोचिएगा घर जाकर आराम से। कुत्ते घोड़े गधे ये भी आपसे खुश हैं कि नहीं है, ये भी पता करना पड़ेगा। जानवर भी खुश हैं कि नहीं है, ये भी आपको पता रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती है हम लोगों को कि हम अपनी खुशियां ढूंढते हैं और अपनी भी नहीं, अपनी का भी एक सिस्टम है। आप मानो या ना मानो, हमारे अंदर बहुत कुछ गलत मलत चलता रहता है, बहुत कुछ जिसके ऊपर हमारा काबू नहीं है, इसी को मन कहते हैं। और मन के मनन में, मन के मनन, मन की सोच में पता नहीं क्या कुछ है, विचारों में, मनन में, चिंतन में, अरे भरा पड़ा है। कैसे करेंगे इससे छुटकारा? तो इसके छुटकारा होता है जब गुरु मिलते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण होता है। समर्पण कैसे? शरणाई शरणागत, झुक गए तुम्हारे आगे प्रभु, तुम्हारे हो गए बस। थोड़ा सा सीखिए।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
0: यहाँ हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, यहाँ जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि हम चाहते हैं महाराज जी हमें आप दो तो हमारी इच्छा का दो, हैं हमें आपने जो करना है वो हमारी इच्छाओं का प्रति करो, हम जो करें अपने ऐसे हम जो सोच लें वही हो जाए। अगर इतना ऐसा आपको करना है तो जो सोचो वो हो जाए, तो फिर तो आपको भगवान से जुड़ना होगा, क्योंकि भगवान जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो जब आप भगवान से जुड़ेंगे, प्रभु से, प्रभ अबनासी, भगवान कौन है? प्रभ अबनासी। प्रभ अबनासी से जब जुड़ेंगे तो ये शक्ति आपको प्रभ अबनासी दे देगा मुफ्त में, जो आप सोचो करोगे वो हो जाया करेगा। हम ऐसे ही हैं, त्रिलोचन दास ऐसा ही है, मैं जो सोचता हूं ना हो जाता है, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं। ये सच बोल रहा हूं, मैं जो सोचता हूं कि मुझे, मैंने कभी जिंदगी में कुछ भी सोचा हुआ ये चाहिए हो गया, मिल गया, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, प्रभु से बड़ा कोई नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अब भगवान जी और प्रभु अविनाशी करते क्या हैं? अब अथॉरिटी तो मुझे दे दी कि जो सोचेगा हो जाएगा, और ये भी अथॉरिटी दे दी अब तू सोचेगा भी नहीं। अब इतनी ताकत लेके तू आराम से बैठा रहेगा, ये भी प्रभु का काम है। इसलिए जीत किसकी है? जो तुझको मंजूर होगा प्रभु वही होगा। जब छोटे हुआ करते थे तो बोले भगवान मिलेगा तो हम क्या मांगेंगे? हम गुड़िया मांगेंगे, पतंगे मांगेंगे। सोच अच्छी थी, गुड़ियों से खुश हो जाते थे हम लोग। गुड़ियां वो जो उड़ती हैं, वो हम पंजाबी में गुड़ियां कहते हैं, यहां वो पतंग कहते हैं। बटाला में हमारे गुड़िया, पता नहीं गुड़िया हिंदी में गुड़िया वो होती है, वो जो क्या कहते हैं डॉल। हाँ, हम लोग जब छोटे होते थे छोटी छोटी सी डिमांड्स होती थी, छोटी छोटी सी इच्छाएं होती थी, और वो इच्छाएं पूरी हो जाती थी। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई। अच्छा, मैं रहता इंसान की तरह हूं, कोई ऐसा नहीं है मुझे, और मैंने कभी मांगा नहीं अंदर से। आपको सच बताता हूं, आज महाराज जी साक्षात मेरे साथ बैठे हैं, आप बैठे हो, प्रभु की मौजूदगी है। कभी मन में सोचा ही नहीं कि ये हो जाए प्रभु। अपनी मेहनत करता हूं, कर्म करता हूं, अपनी मेहनत और कर्म से जो कुछ मुझे मिल जाए बहुत अच्छा है, और अगर मुझे ना भी मिले तब भी महाराज जी ने मुझे इतना सिदक दे रखा है, संतोष। मैं अपने आप को टेस्ट करता रहता हूं, टेस्ट टेस्ट मतलब कि अपने आप को देखता रहता हूं कि ये तेरे को नहीं मिला, अब बता तेरे मूड खराब हुए कि ठीक हुए? मेरा मूड फिर ठीक रहता है, खुश रहता है। उस वक्त मुझे ये अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करनी कि मेरे पास वो ताकत है जी, जो मैं सोच लूंगा वो हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं। अपने आप आने दो जो आ रहा है, नहीं आ पाया तब भी खुश हो जाओ, आज नहीं आया कोई बात नहीं, ये भी खुशी की बात है, नहीं हुआ तब भी खुशी की बात। आप लोग क्या करें, आप अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा दिन चढ़ जाए, थिंक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। आप अगर अच्छे रहेंगे भी तो आपके आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं रहने देंगे, ये भी याद रखिएगा। जानबूझ के आपसे टकराएंगे, आपकी गाड़ी चल रही है एकदम आएंगे, डॉक्टर साहब की गाड़ी बाहर वाले लोग ही ठोक जाते हैं, अपना तो बेचारे का कुछ चलता ही नहीं उनका। बाद में फोन करते हैं, महाराज इंट्यूशन बहुत हो रही थी, कोई गड़बड़ होने वाली है। अरे गड़बड़ होने वाली है तो गाड़ी मत चलाओ, अपनी बीवी को दे दो गाड़ी, तू चला, उससे सारी गड़बड़े भाग जाएंगी, बीवी का नाम आते ही। भगवान अपने बंदों को पहले बता देता है, इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, पहले बता खबरदार कर देता है कुछ होने वाला है। हमें भी खबरदार कर देता है, मुझे तो पहले कर देता है, मुझे एकदम से पता लग जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है, त्रिलोचन दास कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं तो ठीक है, धैर्य धैर्य धैर्य, शांति शांति शांति शांति शांति। पर प्रॉब्लम क्या है, अब गड़बड़ हो भी गई, मान लो आप जा रहे हो और दूसरा आपके साथ आके टकरा रहा है, फिर क्या करेंगे आप, क्या करोगे? मतलब टकराने वाला, ये मतलब नहीं मैं एक्सीडेंट की तरफ मत भाग जाना, टकराने वाला मतलब है कि आप तो चुपचाप बैठे हो और आप अभ्यास कर रहे हो गुरु का, भगवान का, मैं अच्छा सेवक बनूं, और आपको कोई आता है और आपके कानों में आम राम राम राम राम राम राम राम, आप तो गए, गुरु का नशा उतर गया है, भगवान का नशा उतार के चला गया, वो आपके अंदर कान में बात मार के पता नहीं क्या बात कर गया, आप तो है करते रहे। तो उसका क्या करोगे? जिस दिन आपको समझ आ गया, ज्ञान हो गया कि यही सत्य है, उस दिन समझ लो बेड़ा पार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। यह महिला तीन दफा आई हमारे पास, पहली दफा हो गया काम, दूसरी दफा फिर आई, तीसरी दफा फिर आई कि ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगी, मैंने कहा गुरु बहुत बड़ा है,

प्रभु हाय मैं तेरा हो गया, बस बात खत्म, अब तू संभाल मुझे, अब तेरा काम है मुझे संभालना, तू संभाल। अब मेरे से मैं नहीं संभलता, मेरा मन मेरे से नहीं संभलता, मेरी सोच मेरे से नहीं संभलती। ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं, ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं। संगत किसे कहते हैं? जो उस पर टिकी हुई है, जिसका पूरा ध्यान अपने गुरु पर, अपनी शरण शरण अपने परमात्मा। बड़े केस हैं, बड़े बड़े बेअंत। मैं आपको क्या कहानियां सुनाऊं? आप बोलेंगे हैं, एक बच्ची मुझे अभी परसों अपना दुखड़ा, उसको बहुत दुख आए पीछे, तो अब सुख मुझे सुना रही थी अपना। तो मैंने उस बच्ची से कहा, पुत्र, मैंने कहा जब मैं तुझे कहता था, उसे एक साल पहले मैंने कहा था, उसके जीवन पे एकदम से एक डेढ़ साल पहले प्रकोप आ गया। प्रकोप आया तो वो अपनी जिद पे थी, नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, ऐसा कर लो। मैंने कहा टिक जाओ, भगवान कोई कार्य कर रहा है, कोई लेसन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी कोई कृपा करने वाला है, चुप हो जाओ और देखो क्या हो रहा है, शांत हो जाओ। समझ नहीं आई उसको, एक साल के बाद अब समझ आई और वही अपने शब्दों को वापस लेकर मेरे पास आई, आपने जो जो जो जो जो जो, जो कहा था वो वैसा वैसा होता गया। बस मैंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं था पहले? बोले नहीं। कहते दुखों ने इतना सता दिया था, इतना तंग कर दिया था कि मेरा विश्वास रोज डोलता था। मैं कहता था महाराज जी मेरे साथ ऐसी बात करते हैं, ये तो ऐसी बातें सबके साथ ही करते होंगे कि कोई नहीं पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहते आप ये बात करते थे तो मैं कहता था कि मैं कहती थी कि महाराज जी मुझे कोई ऐसा जादू करें, कोई ऐसा करामात करें, कोई चमत्कार करें कि दुख एक मिनट में परे कर दें, तो कर क्यों नहीं रहे मेरे महाराज जी दुख परे। तो मैंने कहा पुत्र, मैं उसको बार बार कहता था, मैं कहा बच्चे तेरा लेसन है, सीखना पड़ेगा, समा है, ये सीखने के लिए सिखाने के लिए आया है, सीखो कुछ और इतनी खुशियां आने वाली हैं। देयर इज, आपके पास अगर दुख आए ना और बहुत ज्यादा दुख आए तो ये समझ लीजिएगा देर इज ए इन्विटेशन टू सुख, एक आमंत्रण सुख को पहुंच चुका है, वह सुख आपके पास आने ही वाला है, बस इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। तो एक साल के बाद उस बच्ची ने आप इतनी खुशी की खुशी हो के एकदम सुख, उसके पास पैसा नहीं था, आज उसको महीने की इतना कृपा हो गई है कि वो कहते हैं मेरे को धनी धन महाराज जी, मेरे घर में आदमी भी खुश वो भी खुश, मेरे घर में धनी धन है महाराज जी, मेरा आदमी अब 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। मैंने कर ले भाई 5, सिर्फ एक साल के अंतर अंतर आपने क्या कर दिया महाराज जी, हमें पता ही नहीं चला। ये सोचिए जरा, ये है जो गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं। आप अपनी जिंदगी को समझिए। मैं बचपन में बहुत छोटा हुआ करता था तो उसके घर में ही कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ परिवार वालों ने उसके साथ बहुत कुछ कर दिया, उनको बहुत कुछ हो गया। उस वक्त वो मुझे आके अब याद दिला रहा था, पीछे आया था मेरे पास 10-15 दिन पहले, मेरे को अंदर आ कहता महाराज जी जो मिला मुझे आपसे मिला, जो मैंने प्राप्त किया आपसे, आपने तो मुझे महाराज जी इतना बचाया, पल पल इतना बचाया महाराज जी, हम भी खोट बहुत है, इतना आज दे दिया कि हम आज महाराज जी इस योग्य नहीं है, कितना आपने हमारे को बख्श दिया, दे दिया, रहमत कर दी, कृपा कर दी। स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? आज आपकी जो जिंदगी है इतनी शांतिपूर्वक, नहीं तो आप भाग रहे थे आज से साल डेढ़ साल पहले, झोला टांग के आप भागते हुए थे इधर उधर, आप टिक के बैठे हो, अपने आप पर कृपा हो रही है, आपकी इज्जत चेंज हो गई, आपके विचार चेंज हो गए, आपको शांति प्राप्त हो गई, पहले से ज्यादा शांत हो गए हो। ये सब कौन कर रहा है? गुरु ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? गुरु बताएगा, एक एक को बताएगा कि मैंने तेरे पे ये रहमत करी है? गुरु नहीं बताता, ये तो हमें खुद ही पता लगना चाहिए कि गुरु हम पर क्या कृपा कर रहा है। अगर गुरु जताएगा तो जता के तो फिर गुरु ने तो फिर वो फिर बात ना रही।

0: गुरु थोड़ी बोलता है, ये तो गुरु के सेवक बोलते हैं कि प्रभु तेरी कृपा हो गई, तेरी कृपा हो गई, तूने कर दिया कमाल गुरुदेव, तूने कर दिया कमाल, आज बेड़ा पार कर दिया मेरा। सेवक को करना है। अब गुरु थोड़ी बोलेगा कि मैं आया तू तो ले तथा अस्तु किया, ले लिया मेरे से ये बातें नहीं अच्छी लगती। इनकी एक एक कृपा के ऋणी है हम, ऋणी ऋणी, कर्जा है सिर पर, एक एक पल का, एक एक पल का शुक्र है। जैसे नाम लिया प्रभु गुरु महाराज जी, हम इस दुख में हैं, कब उसने साथ नहीं दिया, सोचो जरा क्या नहीं दिया। आप अपना हाल तो देखो, पुराने गुजरे जमाने में क्या हुआ करते थे, आज क्या है। बाबा जी का एक बहुत बड़ा काम अड़ा हुआ था, ये बड़े परेशान थे, तो मुझे 8 जनवरी पर बाबा जी मुझसे मांगते हैं, महाराज जी आज आपका जन्मदिन है, आज आप ना मत करिएगा, इनकार मत करिएगा, आज मुझे मालोमाल कर दीजिए। मैं सब बाबा जी के साथ बैठा था, उनको रब की बातें सुना रहा था। तो उस वक्त इन्होंने मुझसे उस वक्त मांगा, महाराज जी आप मुझे दे दीजिए जा जो जो मैं मांग रहा हूं। मैंने कहा बाबा जी दे दिया, जाओ आप पर कृपा हो गई, जो आपको चाहिए दे दिया, पूछो इनसे मिला कि नहीं मिला, बैठे हैं सामने, पूछ लो मिला कि नहीं मिला। वही सोच रहे थे बैठे बैठे, और वही सोच मैंने पकड़ ली कि बाबा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। कहते वही सोच रहा था मैं, ये बात के बारे में सोच रहा था, मैंने आपको सुना भी दी, क्योंकि ये बता नहीं सकते, सत्संग तो मैं कर रहा हूं। ये सोच रहे थे बैठे कि इतना बड़ा कृपा है, इनके मुख से सुन लो, बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। अभी ये बाबा जी हैं, एक नया उपकार फिर चढ़ा दिया, और इनको पता है मेरा गुरु बहुत बड़ा है। मेरे से ऐसे करके रोते हुए इन्होंने बाबा जी ने मुझे कहा था, क्यों बाबा जी, गुरु है वो दयाल है। तभी मैंने कहा मैं सोचता नहीं हूं, और जो सोचता हूं वो हो जाता है, आपके लिए ही सोचता हूं। अगर मैं खुद के लिए सोच लूं कि मैं बहुत ये बन जाऊं, उसी वक्त महाराज जी मुझे बना देंगे, पर क्या होगा, बन के क्या होगा। मैं बोलूं जी मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ये भी हो जाएगा, पर क्या होगा उसके बाद, मेरा प्रभु से नाता टूट जाएगा, क्योंकि मैं अब पदार्थों में जी रहा हूं, पदार्थों की दुनिया में चला गया हूं, परमात्मा की दुनिया से भाग गया हूं और पदार्थों में जी रहा हूं, इसलिए मैं सोचता ही कुछ नहीं हूं। जैसा प्रभु तुम्हें भावे वैसा होवे, जैसा तुम चाहो वही हो।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आप जानना समझना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है या कॉलिंग होती है एचआर की आपके लिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी क्या डिमांड है, यानी कि रुपये पैसों की क्या डिमांड है। इसी से रिगार्डिंग आज मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही है जो हमारे साथ शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एंड एचआर, शारदा ग्रुप के हेड है एचआर डिपार्टमेंट में, मिस्टर गौरव डिमरी जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आर्मी में देश की सेवा की है और लगभग 20 वर्षों का

0: अनुभव है और उसके बाद इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो गौरव सर, आपका सुनो श्रोता 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, रियली एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म।
0: सर ये हमारा सम्मान है कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच आए, तो निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा कि एचआर का जो फील्ड है किस तरीके का फील्ड है, यहाँ फ्यूचर क्या है, और पहले तो आप इसके बारे में बताइए।
1: जहां तक एचआर की बात है, दिस इज एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, मशीनरी कहीं की कहीं अपग्रेड हो जाए, इवन इफ मैन हैज टू रीच द अदर प्लैनेट्स इन द गैलेक्सी, स्टिल दैट मैन हैज टू बी मैनेज्ड। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड एनी फील्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो लोग वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उनका वेल बीइंग, उनकी करियर ग्रोथ, उनका डे टू डे रूटीन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक बहुत ही एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है एंड एबिलिटी एंड टू कंट्रीब्यूट मैटर्स, एंड यू आर एबल टू रियली इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड इवन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो दैट अपॉर्चुनिटी एन ऑल एनकम्पासिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड प्रोवाइड करती है।
0: जी जी गौरव सर, आप मुझे थोड़ा ये डिटेल में ये भी बताइए कि जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो किन किन खास बातों को आप ध्यान में रखते हैं, ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी इंटरव्यू के जाते वक्त।
1: देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन आई सपोज। सी द पॉइंट इज दैट सम टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिग्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। I would only say that today the requirements of a job are just not related to the academic degree. Academic degree is an outcome. आपने एक एग्जाम में किस प्रकार से उस दिन परफॉर्म किया।
0: जी
1: प्रॉबली उसी एग्जाम में आप दो दिन पहले या पांच दिन बाद वही पेपर देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता,
0: अप्स एंड डाउन्स हो सकते थे मार्क्स।
1: सो दैट करेक्ट, सो दैट आउटकम इज वन फैक्टर।
0: जी
1: लेकिन वॉट मैटर्स इज मोर देन दैट डिग्री इज योर ह्यूमन क्वालिटीज, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट बट द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट, कि मैं उस पोस्ट पर बैठकर उस डिग्री की मदद से क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो अ कैंडिडेट मस्ट अलाइन हिज अकेडमिक क्वालिफिकेशन विद हिज मेंटल मेकअप and his plan to contribute।
0: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपके दिल के आसपास कोई एक ऐसा खास गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, वही गाना हम प्ले करेंगे अपने लिसनर्स के लिए।
1: क्योंकि इट्स यूनिवर्सिटी का चैनल है एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू इट, तो आई थिंक लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था।
0: क्या लक्ष्य, बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये गाना आपके प्रोफाइल को या यू कहें कि आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो लिसनर्स, यहाँ पर जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मैं जिंदगी में ऐसी शख्सियत आपको जब मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो वर्क नेचर है वो कैसा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव डिमरी जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बताई। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एक कैंडिडेट को हायर करते वक्त नो डाउट आपने जो बात बताई कि डिग्री मान्यता रखती है, लेकिन इतना भी नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अनुभव क्या है। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप मुझे पहला काम नहीं देंगे और अनुभव की बात करेंगे तो फिर वो मेरा अनुभव कहाँ से कैसे शुरू होगा। तो मैं अनुभव की ही बात करता हूँ कि अनुभव को आप कितना वरीयता देते हैं, या उस वक्त जो आपने कहा कि अगर वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से फेस कर पा रहा है, आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है और डिग्री में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं?
1: गगन जी, देखिए, एवरी जॉब कम्स विद अ जॉब रिक्वायरमेंट, और उसकी जॉब की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपीरियंस, इस ये डिग्री, दैट हैज टू मैच।
0: जी,
1: लेकिन वो कोई भी कैंडिडेट जो उसको मैच करता है वो उसको इंटरव्यू रूम के डोर तक ले आता है। इंटरव्यू रूम के अंदर उसकी जो क्वालिटीज हैं,
0: जी,
1: चाहे वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो और एबिलिटी टू एंगेज हो, वो बहुत मैटर करता है।
0: क्या बात?
1: क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री हैज गिवन द थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, बट एक टीम में काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए, एक ऑलराउंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, एक कैंडिडेट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो मार्कशीट और डिग्री ने दिखा दी।
0: जी जी।
1: सो इन एन इंटरव्यू अ पर्सन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन what he has theoretically learned that has brought him to the interview,
0: right?
1: What will differentiate from him to others and get a selection is how he has evolved into leadership skills, contributed positively, achieved more than what is required, his ability to zealously work for his goals, that matters.
0: Sir, kabhi kabhi aisa bhi hota hai ki is baat ka log galat maayne nikal lete hain ki talkative hona bahut zaruri hai, baatuni hona bahut zaruri hai. To main samajhta hu ki wo cheez alag hai aur jo aap bata rahe hain wo cheez alag hai.
1: Ji, absolutely. Absolutely, one has to in minimal words one can convey a lot.
0: क्या बात है।
1: सो इंटरव्यू के टाइम्स भी लिमिटेड होते हैं, उस ड्यूरेशन में आपको अपने बारे में इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत लंबा बताना है, बट
0: शॉर्ट इन
1: शॉर्ट टाइम फ्रेम यू कैन अचीव, एंड द इंटरव्यू पैनल्स आर जनरली वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल हु कैन कम टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वालिटी एंड नॉलेज।
0: चलिए, यहाँ पर फिर एक ब्रेक आ रहा है जो कि म्यूजिकल ब्रेक है, और गाना जो आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे दिल के आसपास ये खूबसूरत गाना है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ।
1: जी, सो वन सॉन्ग विच रियली आई लिसन एट टाइम्स व्हेन आई टेक अ ब्रेक इज द सॉन्ग कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, बिकॉज़ दैट आल्सो सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट्स मीनिंग।
0: रियली नाइस, आप जो गाने का सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर ही रहा है। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, सो आप कहीं जाएगा मत। एचआर का जो क्षेत्र है, एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब आप किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: बहुत हंसमुख चेहरा है, आप हंसते रहिए जनाब, मुस्कुराते रहिए। सो इंसान की मुस्कुराहट कनेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एचआर का हम देखते हैं कि मुस्कान है तो जाहिर सी बात है कि बंदा खुश मिजाजी के साथ, मतलब वो डर नहीं रहेगा, डर से मतलब वो बेफिक्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल खुशनुमा हम बना देते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वो मुस्कुराहट गायब है, चाहे वो एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है, एक बात ये। दूसरी बात इसी से रिलेटेड, चूंकि एचआर की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, भाषा कितना मैटर करती है सर। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन अंग्रेजी का जो धारा प्रवाह है वो उसके पास नहीं है, आपकी बात को वो समझ पा रहा है और अपनी बात वो आप तक पहुंचा पा रहा है। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि मोदी जी लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस भाषा में आप अपनी पढ़ाई को अब आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: आपने जो सवाल, वेरी वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, एंड इवन टूडे a lot of people who are talented, who possess qualities, maybe शायद वो थोड़ा अपने आप को दो कदम पीछे रखते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत नहीं है
0: जी।
1: लेकिन प्योरली फ्रॉम HR पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, चाहे UPSC हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन अपीयर इन द लैंग्वेज। व्हाट मैटर्स इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, और आपके अंदर अगर काबिलियत है तो उसके लिए उस काबिलियत के भरोसे आप किस प्रकार से लोगों को एंगेज करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कौन सी
0: भाषा
1: का इस्तेमाल होता है। और ये दिस इज चाहे इट इज ऑन अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे इट इज एट लीडरशिप स्पेक्ट्रम इन इंडस्ट्री और इन अ यूनिफॉर्म सर्विस और इन अ सिविल सर्विस, द पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी कैंडिडेट को कभी भी इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलाना भाषा पे महारत नहीं है और फलाना भाषा से मैं वीक हूं। इट डजंट मैटर, आपकी काबिलियत मैटर करती है।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए लेटर्स या यू कहेंगे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा इंटरव्यू का कॉल होगा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, एक वक्त के बाद किसी बंदे को कॉल जाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप से मुझे कॉल आया। इट मींस कि जो मेरा सीवी था वो एक रिजर्व में रखा गया था, उसको संजो कर रखा गया था। या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम इनको भूल जाते हैं, बैंक नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या होता है।
1: अगेन आई वुड से वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि बेस्ड ऑन द वैकेंसी फॉर अ जॉब वेदर ऑन अ पोर्टल और अदरवाइज वो फुली क्वालिफाइड है उस प्रोफाइल के लिए, लेकिन फिर भी शायद उसको वो कॉल नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार पोजीशंस निकलती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन होल्ड हो जाती हैं। कई बार पूल ऑफ कैंडिडेट्स को और वाइड करना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए क्यूआरस चेंज करनी पड़ती हैं।
0: जी जी।
1: सो ऐसा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर वो क्वालिफिकेशन को मैच करता है तो आज नहीं तो कल ही विल, इफ ही इज क्वालिफाइड,
0: तो कॉल जाता ही जाता है।
1: सो इट इज नथिंग टू वरी
0: अबाउट। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: बोलो जो तेरा दिल।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से गौरव डिमरी जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव अपना मिलिट्री क्षेत्र में इन्होंने देश की सेवा की है। एक अनुशासन को लेकर शारदा विश्वविद्यालय में आते हैं और शायद जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि बंदा अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज अगर मैं कहूं कि एक श्रोता को, एक लिसनर्स को, या जो कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त?
1: As I said earlier also, educational qualification और technical knowledge आपको इंटरव्यू के दरवाजे पे ले आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कैंडिडेट सक्सेसफुल होने के लिए अपना इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दे कि वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एंगेज नहीं कर सकते। जब तक आप एंगेज नहीं कर पाएंगे आप लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर सके, चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर सके एंड अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। नॉट कि चैलेंजेस का होने का वेट करें और बोलें कि मेरी डिग्री मुझे क्वालिफाई करती है, मैं इन चैलेंजेस को अब सॉल्व करूंगा। इट शुड बी द एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, इट शुड बी द एबिलिटी टू engage with people, emotional quotient and positivity, honesty of purpose, highest levels of integrity which will
0: क्या
1: make you succeed.
0: है, क्या बात है?
1: Other than the degree only.
0: So listen, मैं समझता हूँ इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि वो जॉब आप हासिल कर ही पाएंगे। चलिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। और बस यही कहूंगा कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

अब सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वन एंड ओनली सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:01 एक मिनट हो चुके हैं, 15 तारीख है और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से, बजरंग बली से, गणपति बप्पा मोरया से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्या आज जाने के जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल न्यू सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक,

0: डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शारदा 90.8 एफएम इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम और इसके जरिए ग्रेटर नोएडा के आसपास की जो अपडेट्स हैं जिसके जरिए मैं आपको हमेशा अप टू डेट रखता हूं और बस यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको हेल्दी रखे, आप सब खुश रहें और आपकी जो काया है वो निरोगी काया रहे। गणपति बप्पा मोरिया। कल थी गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव पूरे भारत में, पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऑन रोड अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक के हालात क्या है, मौसम का मिजाज क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुनने मारा कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में आज जो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और बारिश की संभावना की बात करते हैं तो आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन दिन के समय कुछ इलाकों में हल्की धूप के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हवा में उमस यानी कि ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो 70 से लेकर 76% तक बनी रहेगी ह्यूमिडिटी। और ट्रैफिक की बात कर लेते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी पर सुबह और शाम के वक्त में पीक आवर्स के दौरान सामान्य से भी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है तो इसलिए समय से थोड़ा पहले निकलेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ब्रिक्स समिट के बाद जहां ट्रैफिक को बाधित किया गया था अर्थात बैरियर्स लगाए गए थे वो सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेट्रो सेवा की अगर हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो और यू कहें कि एक्वा लाइन सभी रूटों पर पूरी तरह से सामान्य और अपने निर्धारित समय से मेट्रो चल रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इसी स्टेशन पर बने रहें जिसका नाम है सुनो शारदा 90.8 एफएम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ 9:10 15 तारीख यानी कि मंगलवार का दिन और बजरंग बली से यही दुआ यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का मंगल ना हो। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। भाई सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, इन तमाम बातों के जरिए हम बातों का ही खा रहे होते हैं। हमारे बाबूजी ऐसा कहते हैं। ये क्या था? थोड़ा सा मजाक था लोगों को बांधने के लिए ना। इंफोटेनमेंट बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग बहुत जरूरी है। इंफोटेनमेंट क्या खबर है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि लेन देन का जब मामला है, भारत सरकार कुछ कह रही है, वित्त मंत्रालय कुछ कह रहा है। 14 सितंबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रुपयों के लेन देन की बात हो रही है, यानी कि 2000 रुपये तक के जो सभी UPI और रुपये और डेबिट कार्ड लेन देन को पूरी तरह से फ्री घोषित कर दिया गया है। सरकार ने ये कहा है कि अब बैंकों और गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे जो भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स पर किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष या यूं कहें कि अप्रत्यक्ष चार्ज लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एक भी रुपए आम जन से, पब्लिक से नहीं वसूला जाएगा। वो आगे ये भी कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन की बात सामने आती है, तो इसके तहत अगर आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो राशि है, जो रुपया है, जो मनी है, कितनी भी हो, हमेशा की तरह वो पूरी तरह से फ्री रहेगी। अब जो चार्ज की बात आ रही है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, हाँ वो एक अलग बात है। वो सरकार उनसे खुद बात करेगी, लेकिन वो भविष्य की योजना है। लेकिन ऐसे में हाँ, किसी ने बैठी गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, सरकार धप्पा कर देगी, अर्थात अफवाहों पर ध्यान न दे। हाय हाय, माशाल्लाह क्या बात है, मास्टर साहब की आवाज, मास्टर बोले तो एक ही मास्टर, मास्टर सलीम की आवाज। फिल्म का नाम 21 जनवरी 2026 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। अरुण क्षेत्रपाल पर आधारित ये फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म और बहुत ही खूबसूरत गाना। सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
1: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव मैं रहता हूं आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी का साथ आपके साथ बना रहे तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक के नियमों का आप अच्छी तरीके से पालन करें। अगर आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि दिक्कतें आपके सामने भी आएंगी। अगर आप हिट एंड रन केस में भागते हुए नजर आ रहे हैं तो दिक्कतें आपके सामने बहुत बड़ी सामने आ सकती है। एक अभी कल परसों की घटना है जिसके बारे में मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये घटना की पुनरावृत्ति न हो। घटना क्या कहती है, घटना के बाद ट्रैफिक के नियम क्या है, उस पर सारी बातें मैं करना चाहूंगा। दरअसल ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का केस हुआ है, जहां पर एक लेडी को, एक लड़की को एक कार सवार व्यक्ति ने उसको टक्कर मारी और उसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गया। अब बातें निकलकर ये दोनों सामने आ रही हैं कि वो कह रहा है कि वो मेरे सामने चल रही थी, वो लड़की कह रही है कि मैं बिल्कुल साइड से थी, वो कार वाला मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन जो फुटेज आपने और हमने, हम सब ने देखे हैं, तो निश्चित तौर पर यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उसको हिट किया है और उसकी वो जान जा सकती थी।

भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जाहिर सी बात है कि FIR हो रही है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी होगी। पुलिस ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और नियम ये भी कहते हैं कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो तुरंत मेडिकल फर्स्ट एड के लिए आप उसको लेकर जाएं, तुरंत पुलिस को आप इन्फॉर्म करें। अगर आपने कुछ लापरवाही बरती तो 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। तो ये बेसिक बातें इनको नजरअंदाज ना करें। जाने जाने में कुछ अगर गलती हो जाती है तो पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप किसी एम्बुलेंस को आप बुलाएं। और अगर आपने ये बहुत बड़ा अपराध किया है तो आप बच नहीं सकते। निश्चित तौर पर अपराध है क्योंकि आपने हिट एंड रन का केस किया है। तो बस ये कहूंगा कि नियम से चलिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए। घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और सामने वाले की जान बेशकीमती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: पार्टी ओवर गो।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूं थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूं अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: खाके जमिया। अजय, जब खाने पीने की बात हो रही है तो गगन और अब हम दोनों मिलके बात करेंगे इस माह की, अर्थात पोषण माह की। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, ज्यादा तो नहीं हो गया?
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही बात कही। हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बिल्कुल सही बात है कि पोषण माह यानी कि सितंबर का महीना पोषण माह को समर्पित होता है, डेडिकेट होता है। और इस तरीके से डेडिकेटली यू समझ लीजिए कि आप और हम सब मिलकर जमीन पर लगातार काम कर रहे होते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 9 सितंबर 2026 से लेकर चलेगा 8 अक्टूबर 2026 तक। और इस बार की जो थीम है वो ये है कि हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। इसके अंतर्गत ये है कि आंगनवाड़ी के जरिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, महिलाओं को अवेयर किया जाएगा, बच्चों को भी अवेयर किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जानना समझना बहुत जरूरी है। और जब खाने पीने की बात आती है, आहार की बात आती है, बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, उससे आप तौबा कर लीजिए बच्चा पार्टी, अच्छी चीजें खाइए जैसे कि अनाज, बाजरा, दालें, फलियां, घी, दूध, दही, छाछ, मटन, नेचुरल चीज़ें अगर आप लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फास्ट फूड से आप अपने आप को बचा कर रखिए। और जब हम सब की भागीदारी होगी तो निश्चित तौर पर एक मिशन को बहुत खूबसूरती से हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जब आप हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो ना आप अपने स्पोर्ट्स में आपका मन लगेगा, ना आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अदरवाइज हम बीमारियों को भी अपनी तरफ आमंत्रित कर लेंगे, इनवाइट कर लेंगे। सो प्लीज प्लीज, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा खाएं और इस मुहिम में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुरशादा 90.8 FM होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम हर विषय पर अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुंचाएं। अपनी सांसों में ब्यूटीफुल ट्रैक, अभी दत्त की आवाज। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गाड़ी बुरी हो जो आवाज में चलाएगा। समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अगर आपके साथ, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

फ्रॉम द मूवी लव आजकल पार्ट टू का अरिजीत सिंह की आवाज में सिर्फ और सिर्फ सुनू शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। इतिहास के पन्नों को जब मैं पलटता हूं तो देखता हूं कि आज के दिन क्या खास हुआ है। इतिहास में कुछ ऐसी बातें दर्ज हैं जिनको जानना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है। आज इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये खास दिन इंजीनियर्स डे रखा गया, सेलिब्रेशन का जो एक तौर तरीका है वो आज हम सबके सामने है। तो इसके बारे में बात निकलकर सामने आ रही है कि सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर 1861 को भारत के सबसे महान सिविल इंजीनियर, बांध निर्माता का श्रेय इनको जाता है, अर्थशास्त्री आप रहे और मैसूर के दीवान का जन्म आज ही के दिन हुआ था और आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा इनका योगदान है और कहा जाता है कि बाढ़ सुरक्षा प्रणाली में बहुत अच्छा काम किया और इनके काम को देखते हुए साल 1955 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के उपलक्ष में, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है आज ही के दिन। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम कैसे भूल सकते हैं, 15 सितंबर 1876 को आज के दिन यानी कि आपका जन्म हुआ और बेहद ही अच्छे इंसान, फेमस उपन्यासकार, कहानीकार, एक कहानी देवदास, परिणीता, चरित्रहीन और बड़ी दीदी, इस पर फिल्में भी बनी है, तो आज इनका जन्मदिन है। सुब्रमण्यम स्वामी जी 15 सितंबर 1939 को, ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, इनका आज जन्मदिन है। इसके अलावा और कुछ हिस्ट्री में, कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जैसे कि दूरदर्शन का जब हम जिक्र करते हैं तो दूरदर्शन से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन, जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का जो दर्जा है वो दूरदर्शन को है और इसकी शुरुआत आज के दिन दिल्ली के एक छोटे से स्टूडियो से की गई थी और शुरुआत में बताते हैं एक्सपर्ट कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधे आधे घंटे के लिए ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, हाँ वहाँ टेलीकास्ट हुआ करता था। और बस ये कुछ खास बातें थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक सोनू निगम की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी को जी लीजिए, गा लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, अच्छी तरीके से लोगों के साथ मिलिए, बात करिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। जब दुआएं मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं, तो यकीन मानिए कि रुके हुए काम भी चल पड़ते हैं, बन पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूँ गगन आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

इसलिए हर घड़ी हर लम्हा जी लीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कुछ चीजें, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, गाइए गुनगुनाइए, कहिए कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई। राम राम दोस्त, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें इन्फोटेनमेंट के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूं। हनुमान अंश की मैंने शुरुआत की इन खूबसूरत गानों की लाइन के माध्यम से। लोकल फोक कनेक्ट कर रहा है, म्यूजिक कनेक्ट कर रहा है, फिल्म कनेक्ट कर रही है और यही वजह है कि फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ती जा रही है और लोगों को पीछे छोड़ती जा रही है, फिल्मों को पीछे छोड़ती जा रही है। कहते ना कि जहां पर राम की कृपा हुई तो हर कोई उन पर कृपा करता है और ऐसा ही इस फिल्म के साथ हुआ। सुनने में आ रहा है कि 3 दिन के बाद ये फिल्म पर्दे से उतरने जा रही थी, उसके बाद जो कम बैक किया है, उसके बाद लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो माउथ पब्लिसिटी हो रही है वो देखते ही बन रही है। आस्था, कहते ना कि जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, सच्ची सोच है, सच्ची नीयत अच्छी है, आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, देर है, कहते हैं कि देर जरूर है लेकिन उसके यहाँ अंधेर नहीं है। स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर्स की बात करूं, डायरेक्टर्स की बात करूं, तो ये नामचीन लोग नहीं है, लेकिन उसके बाद आज आप देखिए कि रिजल्ट हम सबके सामने है, है ना। बस आप एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। कामयाबी के झंडों की जब बात होती तो रुपयों का कलेक्शन भी बहुत अच्छा बढ़ता चला जा रहा है और अच्छी कामयाब है ये फिल्म और बहुत अच्छी तरीके से लोग इसको अच्छी तरीके से विद फैमिली देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ इसको देख कर आया हूँ। तो आप भी जरूर देख कर आइए और इसका आनंद उठाइए। धुरंधर, एनिमल, छावा, दंगल, पठान जैसी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ा है, क्योंकि बजट के मामले में अगर हम बात की जाए तो सिर्फ 2 करोड़ का बजट और उसके बाद ये फिल्म लगातार दिन ब दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, में हूं गगन आपके साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कील बिजनिंग सुनो शारदा 90.8 FM, सुनो शारदा के फेसबुक पेज और इंस्टा पेज के माध्यम से आप अपनी डिटेल्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बताएगा जरूर कि ये सुनो शारदा विद मी मेरे साथ कैसा लगता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कील बिजनिंग सुनो शारदा 90.8 FM, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस श्लोक का अर्थ है कि हे ईश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमारी जो काया है वो निरोगी काया रहे, हम हेल्दी रहें, यही हम सबकी कामना है। ओम शांति शांति। राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से। ये खास प्रोग्राम हम लेकर आते हैं रेडियो ओपीडी, जिसके अंतर्गत हेल्थ की बातें होती हैं। जो हमने सुना है वही हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है, यानी कि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जब आप रुपया कमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास वो रुपया किसी काम आता है। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो वही रुपया आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में खर्च कर देते हैं। लेकिन आपके पास आपका स्वास्थ्य है तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के दौलतमंद हैं, बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ही कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। भागती दौड़ती जिंदगी में, कानून के पछड़े में, सच बात तो यह है कि कहा जाता है सर रियलिटी कि कई लोगों से बचिए, जैसे कि पुलिस से बचिए, कोर्ट से बचिए, डॉक्टर से बचकर रखिए, है ना। क्योंकि समय खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत ना हो। हम ये चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो डॉक्टर की राय लीजिए, वकील की राय लीजिए या किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। वकील का जब मैंने जिक्र कर दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, बहुत अच्छे आप इंसान हैं, लोगों की मदद करती हैं और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। और आप हैं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं, जो इनका एरिया है, आपका एरिया है क्रिमिनल और प्लस मैट्रिमोनियल। आप एडवोकेट हैं, आप हैं सरिता नागर। मैम सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। सुनो शारदा के माध्यम से पिछले साल भी हमने लीगल से जुड़ी हुई तमाम बातें की थी, और उसी परिवार का हिस्सा खुद को मानते हुए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस मंच पर दोबारा बुलाया जाए और हम और बहुत सारी ऐसी बातें करें जो कि अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाए भी, और कहीं ना कहीं ये मंच खुला रहे उन सभी लोगों के लिए जिनके दिमाग में ना जाने कितने ही सवाल हैं और वो एरिया से ना बंधे, वो लीगल की बात करें, वो हेल्थ की बातें करें, वो आपके माध्यम से हर तरह के सवाल उठाएं और हम लोग उनका जवाब दें। नो डाउट आप शब्दों के जादूगर हैं और आपसे जुड़ना अपने आप में खुशकिस्मती है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये जो आपका प्यार है, सम्मान है रेडियो के प्रति, आपके लिए दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आपने हमें समय दिया। और स्वामी विवेकानंद खुद ही कहते हैं कि अगर आप हमसे न जुड़ते तो हम आपका धन्यवाद कैसे कर पाते, अदरवाइज तो देखा जाए बहुत सारे माध्यम है आपके पास जहां जाकर आप अपनी बात रख सकते थे। थैंक यू सो मच मैम। सो लिसनर्स, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल हेल्थ। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानकारी एक डॉक्टर को बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन अगर आप भी कुछ जानते हैं या मैं भी कुछ जानता हूं या एक वकील भी अगर जानता है तो उसके बारे में बता सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे बेहतर रह सकता है या मानसिक स्वास्थ्य कब कब खराब हो जाता है जब आप कानून की लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक अवसाद होता है, एक टेंशन होती है, क्योंकि समय लगता है, रुपया खर्च होता है और कभी कभी तो एक जो आस्था है कानून के प्रति जब वो टूटती है तो निश्चित तौर पर जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। जी हाँ, इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि सही कहते हैं डॉक्टर्स और जानकार कि सेहत सही तो लाभ गई। तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता नागर मैम, जो कि एक एडवोकेट हैं। मैट्रिमोनियल और क्रिमिनल आपका एरिया है जिसमें आप जो महारत हासिल है, ये जो आपका एरिया जिसमें आप प्रैक्टिस करती हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आजकल सोसाइटी में बहुत तरह की बातें हो रही हैं और कहा जाए तो नो डाउट ये एरिया साइकोलॉजिस्ट लोगों का है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जो लिटिगेशंस हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य कहाँ पर सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं,
0: जी
1: किन परिस्थितियों में इंसान एंजाइटी डिप्रेशन में पहुंच जाता है, वो है किसी भी स्टेट माइंड का जो स्टेट है वो कांस्टेंट रूप एक ही तरीके से बना रहे। यानी कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर वो कुछ छोटे समय के लिए हैं तो वो नॉर्मल है, वो स्ट्रेस है आपका। लेकिन वही अगर आपके दिमाग पर कब्जा कर ले, यानी कि लगातार वही बने रहे वही थॉट्स, तो वो आपको आगे एक सीवियर डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगे। अब सबसे ज्यादा आप ये देखिए परिस्थिति कितनी दुखद है ये कि अदालतों में जो अपने हैं, और फिर वही बात है कि अगर अपने हैं तो फिर सामने क्यों हैं। बड़ी विडंबना है कि अपनों से ही अपनों के लड़ाइयां, युद्ध, मनमुटाव,
0: जी महाभारत होता है, ये कह सकते हैं अपनों से ही होता है।
1: अपनों से ही हाँ। होता है। सबसे ज्यादा लिटिगेशंस हमारी अदालतें भरी पड़ी हैं फाइलों से, तो आप ये समझिए कि वो याची, वो पक्ष और विपक्ष सालों साल जिस कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है उसकी मेंटल हेल्थ कहां और कहां तक आप देखें कि कितनी खराब हो चुकी होती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल हेल्थ पर बात की जाए। मेंटल हेल्थ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए ताकि वो लड़ सके। लड़ना अपनों से ही है, लेकिन अपनी स्वस्थ मेंटल हेल्थ के साथ में।
0: जी बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं कि लड़ना अपनों से ही है, और सच बात तो है कि कभी कभी जब अपने सामने आ जाते हैं, अपनों के खिलाफ केस दायर कर देते हैं, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, भाग दौड़ होती है, समय खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, और कभी कभी कानून की जो लंबी प्रक्रिया है उससे गुजरते गुजरते इंसान तक गुजर जाता है, तो निश्चित तौर पर जो आपकी मानसिक हेल्थ है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी संबंध में दोनों बातों को साथ लेकर मुझे लगता है कि डॉक्टर तो अपनी बात रखते ही रखते, लेकिन कानून के जानकार भी अगर हमसे जुड़ रहे हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हमने देखा है कि वकीलों ने देखा है कि ये स्वास्थ्य खराब होता है और जिसकी वजह से एक विश्वास तो टूटता ही टूटता है, लोगों की हेल्थ खराब हो जाती है और कभी कभी जिंदगी से वो व्यक्ति चला जाता है, तो किस तरीके से इस कानूनी प्रक्रिया से अपने आप को बचा कर रखें, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाकर रखें, और इससे कौन कौन गुजरता है, कौन कौन प्रभावित होता है, कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं। आप हैं सरिता नागर, जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, क्रिमिनल प्लस मैट्रिमोनियल आपका एरिया जिसमें आप प्रैक्टिस करती हैं, और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से आप आती हैं, तो इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सेहत सही लाभ गई बहुत एक अच्छा विषय जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और इसके संबंध में बात करने के लिए हम सब जानते हैं कि डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन जब कोई जानकार हमारे साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है कि एक सार तो वो हमारे सामने रख ही सकता है, एक अपना अनुभव साझा कर ही सकता है। ऐसे ही अनुभवों को साझा करने के लिए हमने एक आज वकील को अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है। वकील साहिबा कहें दरअसल, और सरिता नागर मैम है, मैट्रिमोनियल प्लस क्रिमिनल केसेस आप देखती हैं और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप आती हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। बिल्कुल सही बात है ये कि मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने के लिए एक्सपर्ट, लेकिन हम ये कहें कि समाज का हिस्सा होने पर हम सभी प्रोफेशनल्स जो भी अपनी अपनी फील्डों पर जो भी काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सभी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी चीजों से गुजरते भी हैं। हमारी ही लीगल फील्ड में अगर देखा जाए तो जब परिवार टूटते हैं या जो परिवार अपनी आपबीती हमसे बहुत ही नजदीकी से अपनी तमाम बातें हमसे जब भी वो शेयर करते हैं, उन टूटते परिवारों में अक्सर ये मैंने नोटिस किया है कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों के सामने ये चुनाव रखा जाता है कि आप माताजी के साथ रहेंगे या पिताजी के साथ में। अब आप समझिए कि जिस बच्चे ने जन्म के साथ माँ बाप एक संयुक्त शब्द समझा, बोलना सीखा, अब आज उसको उनमें से एक का चुनाव करना है। यही चीजें धीरे धीरे समाज में वो बिगड़ता बचपन बिगड़ते यौवन की पहली नींव बन जाता है। आज जो हम इतना एग्रेशन बच्चों में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टूटते बिखरते परिवारों, वो पेन और सफरिंग है जो उन्होंने तमाम अपने बचपन में झेली है माँ बाप के साथ, और तमाम तरह के लिटिगेशनों में किसी ना किसी रूप से वो सीधे अगर नहीं भी जुड़े हैं और उनके परिवारजन उसमें अगर लिप्त हो गए हैं किसी भी कारण से डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का गया यानी कि आने वाले जो भी हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारा यूथ है वो गया हमारा हाथ से। और जब यूथ ही कमजोर है तो फिर राष्ट्र की तो क्या ही बात करें।
0: क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब आपने बात कही। और आपने एक अपनी वो बात रखी है जब आप उस दौर से गुजरती हैं और जब वो इस तरीके के याची आते हैं, याचिकाकर्ता आते हैं, जहाँ बात होती है एक हस्बैंड है एक वाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरते हैं यानी कि उनकी हेल्थ भी प्रभावित होती है। और आपने जो बात की, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, अपने सपनों को पाल रहा है, माँ बाप की जरूरत है, सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती है, आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। हो सकता है कि वो एक महिला से नफरत करेगा आगे चल के, हो सकता है कि एक पुरुष से नफरत करेगा, हो सकता है कि एक जज से नफरत करेगा, हो सकता है कि वकील या वकील साहिबा से नफरत करेगा। तो हम क्या दे रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आपने मैम बहुत सही बात कही कि एक बच्चे को अगर हम अच्छी परवरिश देंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे चलकर देश में योगदान देगा। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। इसके लिए नैतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ वो मूल्यों की बातें, वो संस्कारों की बातें जो हमें घर से सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और जब हम इन बातों के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशाता 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ सेहत सही लाभ गई। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल हेल्थ। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर आप दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं, यकीन मानिए कि मैं तो यही मांगता हूं कि हे मालिक पिता परमेश्वर, मेरी जो काया है वो निरोगी काया बनाकर रखना। और यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप ही हैं अगर आप निरोग हैं। कल्पना करिए कि आपने बहुत सारा रुपया कमा लिया और वही रुपया आपकी हेल्थ को तंदुरुस्त बनाने के लिए खर्च हो रहा है, तो हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। वो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, घर बिखर जाता है जब आप अपनी एप्लीकेशन को लेकर एक अदालत में जाते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आप सरिता नागर जी हैं और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपनी प्रैक्टिस देती हैं और जो आपका एरिया है क्रिमिनल प्लस मैट्रिमोनियल। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि जब इस तरीके परिवारों को आप देखती हैं तो बच्चों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जो डिटेल में आपने बात बताई कि आप चाहती हैं कि हमारा भारत एक युवा देश है, वो बच्चा अपने आगे चलकर देश में योगदान दे, लेकिन जब इस तरीके बातें सामने आती हैं तो वो नो डाउट कि दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वकीलों को कितना आप जिम्मेदार मानती हैं जब केसेस लंबे खिंचते हैं?
1: जी गगन जी, एक चीज एंजाइटी डिप्रेशन मानसिक तनाव की बहुत कहें कि इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये वकीलों को भी नहीं छोड़ता है। हम भी मानसिक दबाव में रहते हैं, हमारी भी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं बहुत तरह के दबावों को झेलते हुए, मगर कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। हम उनके एडवोकेट होते हैं, हम उनके थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं, हम उनकी होप भी बनते हैं।
0: क्या बात?
1: और लंबी चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसका एक हिस्सा तो है ही, जबकि उसकी नींव में बहुत सारी चीजें हैं कि वो प्रक्रियाएं क्यों लंबी होती हैं, अदालतों में क्यों पेंडिंग केसेस पड़े हैं, उन तमाम तरह की चीजों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी है कि वो दुरुस्त रहे, हमारी सेहत, हमारा मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि हम अपने क्लाइंट्स का, अपने याची को न्याय दिलाएं उसके उसके मेंटल पीस के साथ, मेंटल हेल्थ उसकी मेंटेन रह पाए तब तक। तो नो डाउट हम सभी लोगों के लिए सेहत का सबसे स्ट्रॉन्ग ये कहा जाए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, या अब तो शायद ऊपर ही मानी जाए ये, मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो फिट रहे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप पैरालंपिक प्लेयर्स को देखिए, जहां पूरा योगदान आपकी मानसिक शक्ति को ही रहता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, इच्छा शक्ति को रहता है।

0: मानसिक शक्ति को रहता है, और यही वजह कि कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और निश्चित तौर पर जब आप ठान लेते हैं कि कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आ जाएं, अगर कोई कोर्ट केस चल भी रहा है तो मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपना मनोबल बनाकर रखना है, अपने बच्चों को खुशियां देकर रखनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य खराब होता ही होता है। ईश्वर से यह भी प्रार्थना करिए कि कभी इस तरीके के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर लगाने पड़ते हैं तो न्याय की उम्मीद है ही, क्योंकि न्याय प्रक्रिया है और न्याय होता भी है। थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आती हैं, लेकिन एक समय जब न्याय मिलता है तो वो सारी हरारत, सारा जो तनाव है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें हैं, उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। मैम, कोई अगर आपके दिल के आसपास कोई खूबसूरत गाना जो आप सुनना चाहती हों, जब आपके आसपास स्ट्रेस रहता है, जब आप मानसिक तनाव से गुजरती हैं, तो कोई गाना जो आप अपने लिसनर्स को, हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो?
1: जी गगन जी, बिल्कुल। अपनी मानसिक स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से जुड़े रहें। गाने हो, कविताएं हो, किताबें हो, पोएट्री हो, और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, पोएट्री का बहुत शौक है। और सामने अगर कोई बहुत सुंदर पंक्तियां मिल जाएं किसी की, तो वो दिमाग में देर तक ठहर जाती हैं। और गानों में कहें तो लता मंगेशकर की मैं फैन हूँ, उनके आप कोई भी गाने अगर चलाते हैं तो मेरे सारे फेवरेट होंगे वो।
0: क्या बात है, क्या बात है। लता जी साक्षात माँ शारदी की मूर्त है, और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जब ऐसे बच्चे जिस घर में जन्म लेते हैं तो आप बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं कि आप दुनिया के दौलतमंद आदमी आप ही हैं। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: आंटी आप कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी, इधर आओ। बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ सेहत सही लाभ कई, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जाहिर सी बात है, बार बार मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आसपास आपके ये मानसिक तनाव है तो आप भी इसके बारे में मालूम रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है अनुभव के आधार पर तो आप भी साझा कर सकते हैं। ऐसे ही अनुभव से जब वकील गुजरते हैं तो वो बेसिक जानकारी रखते ही हैं किस वजह से एक याचिका जो याचिका करता है उसका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, क्या किया जाए जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे। आप कहती हैं कि कुछ क्रिएटिव होते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये पहले तो जो काम चल रहे हैं वो चलते ही हैं, लेकिन उसके बाद आप बुक पढ़ सकते हैं, शेर व शायरी को अगर आपका शौक है वो आप करिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए और अपने आप को आपको ही तनाव मुक्त रखना होगा। ये सारी बातें कर रही हैं हमारे साथ हैं सरिता नागर मैम, जो कि पेशे से वकील हैं और मैट्रिमोनियल प्लस आपका क्रिमिनल का जो एरिया है उसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। सूरजपुर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी। मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम मैट्रिमोनियल केसेस में डील करते हैं, अधिकतर ये देखा ही जाता है कि महिला ही पीड़ित रहती है और बच्चों की जिम्मेदारियां माँ पर ही आ जाती है
0: जी।
1: जब माँ एक घर का, एक गृहस्थी का, एक परिवार का जो बेस है उसको आर्थिक, सामाजिक, कानूनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और स्वाभाविक ही है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही उस दौरान। यदि खुशहाल माँ नहीं है तो खुशहाल घर नहीं है, खुशहाल बच्चे नहीं है।
0: सही का।
1: बहुत जरूरी है कि घर की माँ, घर की महिला वो खुश रहे। खुशी का मतलब संसाधनों से नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। उसको मालूम है कि मेरी इंटेंशन अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर है, मोटिवेटेड रहे इस बात को लेकर कि मिलेगा, न्याय मिलेगा, उचित जो भी चीजें हैं उसको अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को एक दूसरा मौका देने के लिए वो होप जो है वो उसकी बनी रहे, उसके लिए वो बात जरूर करे, चीजों को शेयर जरूर करे। पहले के टाइम में ये चीजें परिवार में, घर के सदस्यों में, मित्रों में, बहुत बहुत जगहों पर हुआ करती थी। आजकल कहीं ना कहीं आज के दौर में हम सब अंदर की तरफ हैं, भीतर की तरफ तो हैं लेकिन भीतर की ओर पूरे नहीं हैं। यानी कि हम गुमसुम हैं लेकिन भीतर की ओर नहीं हैं। तो गुमसुम होते जा रहे हैं और जिसका असर फिर सीधा अस्पतालों की लंबी लाइनें और बढ़ते अस्पतालों की संख्याएं बता रही हैं कि हम कुंठित हैं, हम अपने मन में बहुत कुछ दबाए हुए हैं। तो जरूरी है कि इस पर
0: मन की बातें साझा कर दें, एक अच्छे दोस्त को आप तलाशें जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को तनाव मुक्त रख पाएंगे, तनाव से दूर रह पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी मन की बात में ये बातें कह चुके हैं और अक्सर हमने सुना है कि मन की बात यानी कि जब आप साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो दोस्तों आप भी हमसे अपने मन की बातें साझा कर सकते हैं। और कहते हैं कि डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए और कहते ये भी है कि जब वकील के पास आप रहे हैं तो वकील से भी कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि केस जीतने के चांसेस वही हो जाते हैं जब आप सब कुछ बता देते हैं अपने वकील को। वकील आपके साथ जब जुड़ता है तो निश्चित तौर पर वो एक लंबे अरसे से जुड़ा होता है, तो वो आपका दोस्त भी बन जाता है, तभी वो आपसे कह पाता है कि आप खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जिस तरीके से मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक वाकया हमें बता रही थी, ऑफ एयर हमसे बात हो रही थी कि ऐसी उसकी जिंदगी में आप शामिल हो गए, वो आपकी जिंदगी में शामिल हो गई। दुआओं का, शुभकामनाओं का दौर रहता है, उसकी मानसिक स्थिति को तंदुरुस्त बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज हेल्दी वो है और उनका केस जरूर चल रहा है लेकिन बहुत जल्द न्याय उनको मिलेगा। तो वो जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में प्लीज आप मुझे बताइए।
1: जी गगन जी, ऐसा मैट्रिमोनियल के ही अंतर्गत एक्चुअली देखा जाता है, या मेरे सामने एक इस तरह का केस भी रहा जिसमें महिला के साथ बड़ा धोखा हुआ और पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया और वो अपनी दो अबोध बालिकाओं के साथ में इस संसार में कहें तो उसको अकेला छोड़ दिया गया और उसकी एक बहुत पेनफुल सफरिंग रही लाइफ में। अब समय लगा, नो डाउट समय लगा, लंबा समय गुजरा उन सारी चीजों को लेकर, लेकिन वो इतनी सेल्फ मोटिवेटेड रही खुद से कि उसे मालूम था कि मुझे अपने लिए तो चाहे मैं एक कदम पीछे हट जाती, उन्हें माफ कर देती, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों के कारण इस लड़ाई को अंत तक ले जाऊंगी, न्याय पाकर ही रहूंगी। उस दौरान न्याय प्रक्रिया तो जिस अनुसार चलती है चलती ही रही, लेकिन बातों से बहुत सारे उसको सुझाए गए कि आप स्पिरिचुअल देखें, रिलीजियस बने रहें, आप अपने अंदर अपने इस मन को थाम के रखें, बस इस मन को मजबूत रखें कि आपकी जो एक युद्ध लड़ रहे हैं आप, अपनों से ही जो लड़ाई चल रही है आपकी, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और उसमें नो डाउट कि हम लोगों का एज अ प्रोफेशनल हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम उन्हें मोटिवेटेड उस तरीके से रखें, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें हमें पता होती हैं हमें, और वो होप बनाए रखनी होती है, हम ही उनकी होप होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी मोटिवेटेड रहें, हम भी पॉजिटिव रहें, तभी तो हम पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे।
0: तो सही बात है। और ये जो दौर है यूं ही चलता रहे दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे, देश हमारा हेल्दी रहेगा, तभी हम कुछ काम अच्छा कर पाएंगे अपने लिए, अपने देश के लिए। और देश में युवाओं की बहुत जरूरत है, और युवाओं का खुद का फर्ज बनता है कि वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो बन पड़े वो आप करें। जब आप अपने आइडियल को देखते हैं, जब आप अपने हीरो को देखते हैं, अक्षय कुमार या ऐसे कई और लोगों को जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए ऑन ग्राउंड जाते हैं, वो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि भाई ये जो सप्लीमेंट, ये जो प्रोटीन बड़े बड़े डब्बे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। लेकिन आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए शाकाहारी रहिए या योग करिए, टाइम से उठिए, टाइम से सोना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस वजह से मानसिक तनाव से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए सेहत सही लाभ का ये विशेष कार्यक्रम मेरे यानी गगन के साथ।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनू शारदा 90.8 FM। जब समुदाय का हम जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें इस रेडियो

0: स्टेशन से हम आप तक पहुंचा रहे होते। एक विषय को आप लेकर आई, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता नागर मैम, जो कि मैट्रिमोनियल प्लस क्रिमिनल का एरिया आप देखती हैं, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैम ने ये भी बताया कि अपनी मन की बातें आप शेयर करें, गाने को सुनें, कुछ क्रिएटिव करें, और चूंकि याचिकाकर्ताओं से जब मिलती हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को देखती हैं, खासकर महिलाओं से जब आपका वाबस्ता रहता है, उनसे जुड़ाव रहता है, वो सारी बातें आपने हम तक पहुंचाई। तो मैम दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और निश्चित तौर पर जो इस दौर से गुजरते हैं या गुजरती हैं अपने आप को बेहतर बनाकर रख पाएंगी, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, ये अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, टेंशन आती हैं, लेकिन जो आपने ज्ञान दिया है, जो नॉलेज शेयर की है, वाकई बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम,
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी मुझे इस मंच पर ये दोबारा ये मौका देने के लिए कि हम अपनी बातों से, अपने विचारों से सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैला सकें। और नो डाउट आप अपने इस बात पर चलते रहें, और हर रात की एक सुबह जरूर है।
0: क्या बात है, क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख, देख भाई देख, उसमें ये गाने की लाइनें आती हैं, हर शाम के बाद सवेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख। और मैम ने यही कहा कि हर शाम के बाद सवेरा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और आप मेलजोल बढ़ाने के लिए फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी अपने मन की बातें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, खेती किसानी में उपयोग होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन योजना की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। किसान मित्रों, पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण में इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है, जिनमें खासकर हमारे युवा, क्योंकि युवा कल के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के साथ युवा पीढ़ी से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु परिस्थिति की नाजुकता देखते हुए आज ही आवश्यकता बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। युवा साथी अपने दैनिक जीवन में स्थायी आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, पानी का संरक्षण करना, साथ ही साथ कूड़े का प्रबंधन करना। और हमारे युवा साथी पर्यावरण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पार्कों की सफाई करना और पर्यावरण संबंधी अभियानों में शामिल होना। इसके अलावा युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा साथी पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पर्यावरण संरक्षण में हमारे युवाओं की भूमिका की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं चमन कपासिया।
1: अरे मानस मानस।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चमन कपासिया से ये उपदेश। किसान मित्रों, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। हर क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी तरह हमारी जो खेती किसानी है उसमें भी आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी ग्रीन हाउस खेती तकनीक का उपयोग करके बेमौसम की फसलें उगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद तारामती का और गायक कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र और तारामती के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे सुनील चौहान और टीना पटौदी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो किसान मित्रों, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार की जो ऋण योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन से अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

शाहपुर बस्ती में धर्म सिंह के यहाँ पहुंच गए, जिनके लड़के का नाम नीरज था। और किस तरह से कहने लगे, हम लड़के की तलाश में आए हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर महावारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर महावारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ

0: समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। हमारा FM स्टेशन लगातार यही कह रहा है और कहता रहता है कि हम सबको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और यही एक वजह है कि अभी हाल ही में कुछ एपिसोड हमने बनाए हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। एक खास एपिसोड हमने बनाया हिंसा को नो, उसके अंतर्गत कौन कौन सी हिंसाएं आती हैं, कौन कौन सी हिंसाओं का सामना करना पड़ता है हमारी माताओं को, बहनों को और यही सारी बातें इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई। हमारा फर्ज बनता है कि हम बातों को आप तक पहुंचाएं और आप अपने अधिकारों को जानें, समझें और जब आपको लगता है कि अब वाकई मुझे अपने अधिकारों को जानना, समझना वाकई बहुत जरूरी है या आवाज उठाना बहुत जरूरी है तो प्लीज आप अपनी आवाज बुलंद करें। आज के इस भाग में हम जो बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में, तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, उससे अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकारों का संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निकाय की स्थापना करेगी जो इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग के कुछ कार्य इसके अंतर्गत आते हैं जिसके विषय में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप पर निजी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। आयोग किसी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत किसी अन्य संस्था का दौरा कर सकता है। इलाज, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से रह रहे निवासियों की रहन सहन की स्थिति का अध्ययन करके राज्य सरकार को सलाह देना। संविधान या मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किसी कानून के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उचित सुधारक उपायों की सलाह देना। मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इसे बढ़ावा देना। समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकारों के बारे में साक्षरता फैलाना और प्रचार, मीडिया, सेमिनारों के जरिए इन अधिकारों पर अन्य उपलब्ध साधनों के जरिए जागरूकता लाना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय के विषय में। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते हुए अपराधों के मुकदमे तेजी से चलाए जा सकें, इसके लिए राज्य सरकार ऐसे मुकदमों को चलाने के लिए हर जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में निर्धारित करा सकती है। अब इसी में बात कर लेते हैं विशेष सरकारी वकील के विषय में। राज्य सरकार हर मानवाधिकार न्यायालय में ऐसे मामलों के लिए एक ऐसा विशेष सरकारी वकील नियुक्त करेगी जिसे वकील के रूप में अभ्यास करते हुए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो चुका हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके विषय में जानना समझना वाकई बहुत जरूरी है कि हमारे अधिकार क्या हैं, सरकार हमारे लिए क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराती है, हमें किन किन बातों का लाभ उठाना चाहिए, अपनी बातों को कब सामने रखना चाहिए और कब कानून के जानकार होने के नाते आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से अंतराल का, कहीं आप जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। अब हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं और बस यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकार पता होनी चाहिए और वक्त आने पर वो अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। और ये भी सच है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिला घर की लक्ष्मी होती है ना, कोई नहीं चाहता कि उसका वो कोई दूसरा रूप देखे, चाहे वो दुर्गा का हो या काली का हो। इसलिए हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संशोधित अधिनियम 1995 में संशोधित हुआ था और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जोरो ऑस्ट्रियन, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। आयोग के कार्य क्या है? अल्पसंख्यकों के विकास का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए सलाह देना, अल्पसंख्यक समुदायों से कोई भेदभाव हो रहा है तो उसके कारणों पर अध्ययन करना और उस भेदभाव को हटाने के उपायों के सुझाव देना, अल्पसंख्यकों से भी संबंधित मुद्दों और उनकी कठिनाइयों पर समय पर रिपोर्ट देना। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013। ये एक भारतीय कानून है, इसे लोकसभा ने 19 मार्च 2013 और राज्यसभा ने 21 मार्च 2013 को पारित किया था। ये अधिनियम यौन अपराधों से संबंधित कानूनों पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराधी प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन उपलब्ध कराता है। अब हम इसी में बात करना चाहते हैं अपराध और दंड के बारे में। एसिड से हमला तो दंड क्या? कम से कम 10 वर्ष की जेल की सजा, जो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है, और चिकित्सा खर्च की पूर्ति के लिए न्यायोचित जुर्माना होगा जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। एसिड हमले का प्रयास, दंड आता है कम से कम 5 वर्ष की जेल की सजा, जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, 3 वर्ष की जेल की कठोर सजा, जुर्माने बिना या जुर्माने सहित अगर अपराध खंड 1, खंड 2 या खंड 3 में वर्णित के अंतर्गत आता है, 1 वर्ष तक की जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है इस अपराध के अंतर्गत। और इसी में धारा 354 में संशोधन, जेल की सजा जो कि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, इसे बदलकर अब इस प्रकार रखा गया है, जैसे कि जेल की सजा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से की गई गतिविधि, दंड इसके अंतर्गत आता है कि कम से कम 3 वर्ष की जेल की सजा जो जुर्माने के साथ 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, दृश्य रति यानी पहली बार सजा के तौर पर कम से कम 1 वर्ष की सजा जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दूसरी बार और उसके बाद कम से कम 3 वर्ष की जेल की सजा जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, पीछा करना पहली बार अपराध के लिए जेल की सजा जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, अनैतिक व्यापार इसके अंतर्गत बात सामने आती है, यानी कि दंड वाली बात वो इस प्रकार है, अनैतिक व्यापार करने वाले को कम से कम 7 वर्ष की जेल की कठोर सजा हो सकती है और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, अगर अपराध में 1 से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो कम से कम 10 वर्ष की जेल की कठोर सजा या आजीवन कारावास में बदली जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, अगर अनैतिक व्यापार किसी अवयस्क का किया गया है तो 10 वर्ष की जेल की कठोर सजा जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, अगर 1 से ज्यादा बच्चों की खरीद बिक्री की गई है तो कम से कम 14 वर्ष की जेल की कठोर सजा जिसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा बार अनैतिक व्यापार के अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, जिसका अर्थ है कि उसका बाकी का सारा जीवन जेल में गुजारना होगा और जुर्माना भी हो सकता है, अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अनैतिक व्यापार में शामिल है तो उस लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा होगी, जिसका अर्थ है कि उसे बाकी का अपना जीवन जेल में बिताना होगा और जुर्माना भी हो सकता है। चलिए, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, एक अच्छी खास जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं लगातार आप तक पहुंचा रहा हूं, तो बस
आपका फर्ज बनता है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। 0120-4020-6005 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। और बस अपने अधिकारों को जानें, समझें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर कहीं कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो अगर आप कानून के जानकार हैं या नहीं है, तब भी आप कानून का सहारा ले सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

इंडिया। बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले दो भागों में हमने वो बातें आप तक पहुंचाई, आज ये चौथा एपिसोड है, यानी कि इससे पहले तीन एपिसोड हमने आप तक पहुंचाए और आज चौथा और आखिरी एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में। उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपराध की श्रेणियां, उसका दंड, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब प्रयास, इस विषय में बात करते हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्वतंत्र रूप से कई प्रयास शुरू किए हैं जिनसे अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए बल या अधिक अवसर विकसित हुए। ऐसे कुछ प्रयासों का जो ब्यौरा है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ट्रैक चाइल्ड यानी गुमशुदा बच्चों की खोज। ट्रैक चाइल्ड को समेकित बाल संरक्षण योजना यानी ICPS और किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाया गया था ताकि गुमशुदा बच्चों की खोज और पाए गए बच्चों के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराया जा सके। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल गुमशुदा और पाए गए बच्चों के मामले पुलिस प्राधिकरण को ऑनलाइन रिपोर्ट करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब बात करते हैं, एक विषय है, टॉपिक है हिम्मत। इसके अंतर्गत बात सामने आती है हिम्मत महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का एक खास प्रयास है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम दिल्ली NCR में, तो ये बात दिल्ली की हम कर रहे हैं। हिम्मत एक आपातकालीन सेवा है जिसमें एक एंड्रॉयड इमरजेंसी एप्लीकेशन है जिससे किसी महिला द्वारा आपात स्थिति में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों या किसी विशेष संपर्क नंबर या समूह को संकट कॉल भेजी जा सकती है। पुलिस कर्मी को इन SOS कॉल की लोकेशन एक पोर्टल पर और SMS के जरिए अपने फोन पर वो प्राप्त कर लेते हैं। अगला बिंदु है संकटकालीन कॉल या संदेश का पुलिस कंट्रोल रूम, जिसे हम कहते हैं PCR, द्वारा उत्तर दिया जाएगा और PCR वैन और नजदीकी पुलिस स्टेशन के जरिए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हिम्मत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे मैंने कहा NCR में ही कार्यरत है। हिम्मत एप्लीकेशन प्रयोगकर्ता की कॉल को उत्तर दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंध कंट्रोल रूम द्वारा हॉटलाइन तार संचार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर जाने पर कॉल का उत्तर देना संभव नहीं है। सवाल ये आता है कि हिम्मत का इस्तेमाल हम कैसे करें, तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और बताए हुए दिशा निर्देशों का आप अच्छी तरीके से पालन करें और इस ऐप के माध्यम से आपकी लोकेशन पुलिस को तत्काल पता चल जाती है, तो ये वाकई एक अच्छा कारगर आपका मित्र बन सकता है हिम्मत ऐप, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले बात करना चाहता हूँ वन स्टॉप सेंटर यानी OSC के विषय में। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि वन स्टॉप सेंटर निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिला को सहायता देने के इरादे से बनाए गए हैं। शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं की उम्र, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति से निरपेक्ष उन्हें चिकित्सा संबंधी कानूनी मनोसामाजिक सहायता दी जाएगी। ये हिंसा से प्रभावित सभी महिलाएं, जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां भी शामिल होंगी, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र से हों। तो वन स्टॉप सेंटर, जो कि शारदा विश्वविद्यालय भी इस क्षेत्र में अपना काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर, गौतम बुद्ध नगर पुलिस के साथ मिलकर, और हमारा जो एक विश्वविद्यालय का स्कूल है, लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो जानकार हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वो भी इस तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं।

अगर आपको लगता है कि आप इस सेंटर में जा सकते हैं तो आप जरूर विजिट करें, या अगर आपको लगता है कि शारदा विश्वविद्यालय आप आना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर मुलाकात कर सकते हैं। 01204060205 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो तीनों साइट्स हैं उसके जरिए, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं तीनों सोशल मीडिया का, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, उसके जरिए भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल महिलाओं के कानूनी अधिकार के विषय में बहुत सारी बातें हुई और इस पर हमने 4 भाग यानी कि 4 एपिसोड आप तक पहुंचाए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। फिलहाल अपने शब्दों को विराम देते हुए मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए, सुनो शारदा 90.8 FM और महिलाओं का सम्मान करते रहिए। नमस्कार।

0: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
1: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
0: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
1: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
0: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को

0: फोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है, ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं, एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रूपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको, हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं

तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी, स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की, केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन, बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई वसंत भाग 2, जो कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, में शामिल एक पाठ है हिमालय की बेटियां, जिसके रचनाकार नागार्जुन हैं, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, नागार्जुन एक बेहद चर्चित बहुमुखी बहुभाषी रचनाकार हैं। मेरा आशय ये है मित्रों कि नागार्जुन ने न केवल हिंदी बल्कि मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में भी रचनाएं की। उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी, दर्जनों उपन्यास लिखे, साथ ही साथ मैथिली में भी समान रूप से लिखा। खास तौर से उनके 2 कविता संग्रह हैं मैथिली में हैं और 2 मैथिली में उपन्यास भी है, 1 दर्जन हिंदी में उपन्यास हैं। इसके अलावा 1 दर्जन कविता संग्रह भी हैं और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे और पत्र लेखन में भी उनका बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों पत्र भी लिखे अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को समय समय पर। आज जिस पाठ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो एक निबंध है, वो लेख है, या यात्रा संस्मरण भी हम उसको कहते हैं। अर्थात जब कोई भी हो सकता है, वो कोई बच्चा हो सकता है, कोई बच्ची हो सकती है, कोई बुजुर्ग है, रचनाकार है, कोई कलाकार है, जब वो कहीं जाता है किसी दूसरी जगह पे और वो जो देखता है, अनुभव करता है, उसको व्यक्त करना चाहता है। और नागार्जुन ने भी इस निबंध में, इस लेख में यही किया है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालय की बेटियां, अर्थात नागार्जुन ने जो हिमालय पे जाकर देखा उसी का इसमें वर्णन है। हिमालय से तो हम सब परिचित हैं कि वो उत्तर भारत में बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय की बेटियां जब हम कहते हैं तो हमारी जिज्ञासा पैदा होती है कि ये बेटियां किसके लिए, हिमालय की बेटियां। हिमालय तो पर्वत है, और अगर पर्वत है तो उसकी बेटियां, अर्थात यहां पे नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां जब कहा है तो वो दरअसल हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में अपने अनुभव साझा करना चाह रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने कहा कि नागार्जुन मैथिली में भी लिखते थे और मैथिली में उनका नाम यात्री चलता था, और यात्री के पीछे भी एक रोचक कथा है दोस्तों कि नागार्जुन की एक पहचान पूरे घुमक्कड़ कवि, फक्कड़ कवि, और उन्होंने न केवल भारत बल्कि तिब्बत और श्रीलंका की भी यात्राएं की, और यात्रा का उनको इतना चाव था कि वो बार बार अपने जन्मभूमि बिहार से, दरभंगा से जो कि उनका जन्म स्थल है, उसमें एक गाँव है दरभंगा में, वहां से वो बार बार भारत की यात्रा करने के लिए निकल जाते थे, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात हो और मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक कि श्रीलंका तक। उन्होंने अपनी शिक्षा अगर बिहार के गांव से शुरू की, बनारस में उन्होंने संस्कृत में अपनी शिक्षा पाई, तो अपने बाकी के अध्ययन के लिए, खास तौर से बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए, वो श्रीलंका भी गए, और उन्हीं की तलाश में बौद्ध ग्रंथों को खोजते खोजते वो तिब्बत भी गए। और तिब्बत जब हम जाते हैं तो आप थोड़ा नक्शे को देखिए, नक्शा हमें ऐसा दिखाई देगा, जब हम तिब्बत की ओर बढ़ते हैं तो हमें हिमालय पार करना ही पड़ेगा। अर्थात नागार्जुन जब तिब्बत जाते हैं तो वो हिमालय को देखते हैं। हिमालय को देखने के कई नजरिए हैं, आप शुरुआती तौर में जो नीचे वाली श्रृंखला है हिमालय की वो देखेंगे, फिर बीच वाली श्रृंखला, और फिर सर्वोच्च चोटियों तक जाते हैं। नागार्जुन ने हमेशा नीचे का हिमालय तो देखा ही, वो हमेशा जो कहते हैं ना हिमगिरी की पर्वत की, जो सर्वोच्च कैलाश पर्वत तक, नागार्जुन के हिमालय के ऊपर एक नहीं कई निबंध हैं, जैसे कैलाश की ओर और सिंध में 17 महीने टिहरी से नेहलंग हिमालय की बेटियां हम लोग देख ही रहे हैं। अर्थात नागार्जुन ने हिमालय को बार बार कई तरह से देखा और उन्होंने जब नदियों को देखा तो उनके मन में जो भाव आए उसी को इस निबंध में लिखा है। क्योंकि निबंध आपके सामने है, आपके साथ है, आप चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं और हम चाहेंगे कि पाठ के साथ साथ जो बात इसमें से निकल के आए वो हम आपसे साझा करें। तो हम पाठ को देखते हैं, हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से निकलने वाली नदियों को नागार्जुन ने कैसे देखा, कैसे अनुभव किया, कैसे जाना और वो किस तरह से उसको हमें बताना चाह रहे हैं, यही सब इस पाठ में है। देखिए शुरुआत पाठ की बड़ी रोचक है। पाठ की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल इलाकों में मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। अर्थात नागार्जुन ने पहले जब भी देखा हिमालय को दूर से देखा और दूर से देखने पर जो नदियां निकलती थी वहां पे वो नदियां उनको बड़ी शांत दिखती थी, गंभीर दिखती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। मानो कैसी दिखती थी, जैसे कि कोई संभ्रांत महिला हो, कोई कुलीन सभ्य शालीन महिला हो, उसकी भांति प्रतीत होती थी और उसको देख के आपके मन में आदर और श्रद्धा पैदा होती थी। और इन नदियों में उन्होंने वैसे ही डुबकियां लगाई थी जैसे कि हम अपनी दादी माँ मौसी की मामी की गोद में खेलते हैं, वो उसी तरह से उन नदियों में नहाते थे, खेलते थे। ये नागार्जुन ने जब तक उनको दूर से देखा था, लेकिन अब की बार जब वो हिमालय पे चढ़े, देखिए रोचक है कि इसमें लिखा हुआ है कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात ये पूरे पाठ को आप एक व्यक्ति की तरह देखिए। जैसे हम कहते हैं ना मानवीकरण, मानवीकरण का मतलब हम किसी चीज को एक जीवित व्यक्ति की तरह जब देखते हैं तो उसको हम हिमालय को कहा कि हिमालय के कंधे, एक व्यक्ति की तरह देखा। हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय को फिर व्यक्ति मान के कह रहे हैं कि उनकी बेटियां। तो ये जो आप किसी प्रकृति को, किसी भी चीज को जब व्यक्ति और मानव के रूप में कल्पना करके देखते हैं तो इस तरह की शब्दावली बनती है कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात आप जब हिमालय के ऊपर चढ़े तो वहां से देखा कि ये जो गंगा है, यमुना है, सतलज है, वो वहां तो इतनी दुबली पतली नजर आती हैं, लेकिन समतल मैदानों में जाकर वो एकदम विशाल हो जाती हैं और उनका उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसना ये सब जो भाव भंगिमाएं थी वो उनको लगता कि पहाड़ में तो सब दिखाई देता है लेकिन मैदानों में ये सब नहीं दिखाई देता और उनको बड़ा अचरज होता है, आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि मैं जब किसी लड़की को भी देखूं या कली पर किसी फूल पर मेरा ध्यान जाता है तब भी मुझे इतना कोतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अर्थात नदियों का जो बचपन है, बाल रूप है, उतना आश्चर्य उनको बाकी चीजों को देखने पे भी नहीं होता जितना कि वो नदियों के बाल रूप, अर्थात वो बिल्कुल जहां से नदियां बनती हैं, पहाड़ों से, पर्वतों से और खास तौर से हिमालय से। जब हिमालय पे वो नदियों को देखते हैं तो फिर उनके मन में जिज्ञासा होती है कि कहां ये भागी जा रही है। मन में विचार आता है नागार्जुन के कि कहां भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब सवाल तो यही है कि भाई वो तो हिमालय की गोद में खेलती हैं, फिर भी ये उससे अलग होके कहां जा रही हैं। देखिए बड़ा रोचक है कि शब्दावली जब चुनता है कोई भी रचनाकार तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे अतृप्त है, प्यास है, नदी के लिए खुद वो तो पानी है और उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है कि इनकी प्यास कौन मिटा सकेगा। और बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, वो बर्फ भी बोलते हैं उसको और बर्फ भी, जैसे गर्मी और सर्दी वाला मामला है ये। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधितक्याएं, सर सब्ज उपतक्याएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अर्थात ये नदियां जहां से निकलती हैं वो कैसा क्षेत्र है, वहां पे बर्फ जली नंगी पहाड़ियां हैं। मित्रों जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते नहीं, अर्थात वो उसको जला देते हैं, जितनी ऑक्सीजन जितनी धूप चाहिए वो उनको नहीं मिलती, तो वो बर्फ जली नंगी पहाड़ियां हैं। और होगा भी कहीं तो थोड़ा बहुत होगा, छोटे मोटे पौधे होंगे, छोटी मोटी घाटियां होंगी। और घाटियों के साथ साथ दो शब्द इसमें थोड़ा रोचक हैं, थोड़े कठिन से भी लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नए शब्द हैं, बेसिकली मूलतः ये नए शब्द हैं कि बंधुर अधितक्याएं। बंधुर अधितक्याएं मतलब, बंधुर मतलब मुकुट, मुकुट उसका, अधितक्याएं, अधितक्याएं वो क्षेत्र होता है जिसको हम टेबल लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थात आप पहाड़ की चोटी की कल्पना करिए और उस पे एक समतल एरिया का एक तरह से कोई टुकड़ा निकल आता है, कोई क्षेत्र निकल आता है, जैसे टेबल के ऊपर प्लेन होता है, वो टेबल ऊंची होती है, वैसे ही उसको टेबल लैंड जो होती है वो है सरसब्ज। सरसब्ज मतलब हरी भरी, उपतक्याएं घाटी, घाटी मतलब दो पहाड़ों की चोटियों के बीच में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपको दिखाई देगा, अर्थात कहीं ऊंची जमीन है कहीं नीची जमीन है, ऐसा है इनका लीला निकेतन। इनका खेलने का, लीला करने का जो क्षेत्र है वो मैदान, ऐसा लगता है मानो कि वो मुकुट की तरह हो और छोटी छोटी घाटियां कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और जब खेलते खेलते वे दूर निकल जाती हैं तो रास्ते में क्या क्या आता है, देवदार के पेड़ आते हैं, चीड़ आते हैं, सरो आता है, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद आने का मौका मिल जाता होगा। आप ये भी देखिएगा कि ये जो सारे पेड़ हैं, ये खास तौर से एक आध को छोड़ के वो सारे हिमालय में ही आपको मिलेंगे, हिमालय के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। देवदार हो, चीड़ हो, सरो हो, चिनार हो, ये सब आपको ऊपरी हिमालय से लेके जो हिमालय का क्षेत्र है वही मिलेंगे। और फिर जब वे वहां से निकल आती हैं तो हिमालय को कैसा लगता है कौन जाने, बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। आप देखिए कि बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, जैसे कोई बुजुर्ग है और उसकी बच्चे या बेटियां इधर उधर चले जाते हैं तो वो सिर धुनना एक मुहावरा है, परेशान होना। और मैं अगर या कोई भी व्यक्ति इन चोटियों से जाकर पूछता है तो भाई कहां गए आपके बच्चे, तो कोई जवाब नहीं मिलता, विराट मौन के सिवा उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। एक विराट चुप्पी, आप पहाड़ियों से जाके देखिए, एकदम शांति, कुछ नहीं आपको उत्तर मिलेगा। अब बेटियों, हिमालय, पहाड़, पर्वत के बाद, नदियों के बाद, अब वो दो उदाहरण देते हैं नागार्जुन कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अब नागार्जुन दो उदाहरण देकर हमें बता रहे हैं, देखिएगा जितने भी ये नाम नदियों के मैंने लिए, ये सारे के सारे इन दो नदियों के ही हिस्से हैं, दो नदियों से ही निकलते हैं, कोई पहले मिल जाता है, कोई थोड़ा आगे चल के मिल जाता है। मुख्यतः दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। वो बताते भी हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कितना सौभाग्यशाली है यह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। ये कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने बड़ी सुंदर तुलना की है, जैसे दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, जैसे जब बर्फ जमना शुरू होती है तो एक एक जो ऑक्सीजन को जमाते हुए धीरे धीरे वो जमनी शुरू होती है और वो बर्फ इकट्ठा हो जाती है और वही महानदी बनके वो समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, चल पड़ती है। और फिर वो कहते जाति कहाँ है, वो समुद्र में मिलती है, और समुद्र में मिलने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं नागार्जुन की मानो जैसे बेटियां हैं, बेटियों का हाथ समुद्र के हाथ में दे दिया हो, ऐसा लगता है कि वो कितना सौभाग्यशाली है कि उन्हें हिमालय की इन दो बेटियां अर्थात ये दो मुख्य नदियां जाके नागार्जुन हमसे साझा करते हैं। और वो क्या है कि जिन्होंने मैदानों में इन दो नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी कुछ हिचक नहीं होती है। फिर वही बात कह रहे हैं कि जो लोग हिमालय पे रहते हैं, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए बेशक ये लगता हो कि भाई ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन जो सामान्य समतल क्षेत्र में रहते हैं वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो पहाड़ पे कैसी दिखती हैं। और अगर हम उसी प्रतीक को, उसी उपमा को आगे बढ़ाएं तो हमें ये लग रहा है मानो जैसे कि भाई आपने हिमालय को पिता कहा, नदियों को बेटियां कहा, समुद्र को दामाद कहा। मैंने कहा कि नागार्जुन बार बार हिमालय को देखते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं, हिमालय को महसूस करते हैं। और हिमालय की जब बात आती है तो एक चीज़ और मित्रों, कि नागार्जुन के प्रिय कवि कालिदास थे। संस्कृत में आप देखेंगे कालिदास हमारे बहुत ही और महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं संस्कृत के, और उन्हीं की एक रचना है मेघदूत। यहाँ पे नागार्जुन उस मेघदूत का, मेघदूत का आशय क्या है, मेघ मतलब बादल और दूत मतलब जो हमारा संदेशा लेके जाता है, अर्थात कालिदास ने बादल की कल्पना एक दूत में, दूत के रूप में की, जो कि उसका संदेशा ले, किसका संदेशा लेके जाता है, उसके पीछे एक कथा उन्होंने कही मेघदूत में कि यक्ष और यक्षिणी की एक कथा कही, दो कहिए कि क्या कहेंगे हम उसको, जनजाति समूह कह लीजिए, देवलोक के प्राणी कह लीजिए, हिमालय में रहने वाले मनुष्य कह लीजिए, देवता कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, यक्ष और यक्षिणी की जो विरह गाथा है उसको आधार बना के कहा, और वो उसका संदेशा लेके कहता है कि मेघदूत जाए, उसी का संदर्भ इसमें है। और वो क्या कहते हैं,

0: दास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, क्या कहा था? और आपको पता चली गया कि कालिदास की चर्चा हो रही है जो कि आज से लगभग 1500-1600 साल पहले हुए, और विरही यक्ष की वो अलग अलग हो गए, यक्ष और यक्षिणी, उसको अपना यक्ष का संदेशा लेके वो जा रहा है यक्षिणी के पास। वो क्या कहा? बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जिन्होंने अलग अलग देखा है कि मान लीजिए कोई यूपी बिहार में उसको देखेगा तो बिल्कुल शांत रूप में बहती हुई दिखाई देंगी, पहाड़ पे देखेंगे तो अलग रूप दिखाई देगा। लेकिन बेतवा, इसमें देखिए वेत्रवती लिखा हुआ है, अर्थात कुछ चीजों के, वस्तुओं के, जगहों के, नदियों के, क्षेत्र के नाम आपको संस्कृत में और दूसरे काव्य में अलग मिलेंगे, और ये उसी का उदाहरण है। ये बेतवा नदी को ही, जो कि मध्य प्रदेश में है, कि जब वो कह रहा है यक्ष कि मेघदूत तुम मेरा जब संदेशा लेके जाओ तो वहाँ रास्ते में आपको बेतवा नदी मिलेगी, वेत्रवती नदी मिलेगी, वहाँ ठहर के भी थोड़ी देर बारिश करना और उसको भी प्रेम का प्रतिदान देते जाना, और निश्चित रूप से वो आपसे मिलके अर्थात आपको पाकर खुश होगी। ये बात वो फिर कह रहे हैं कि शायद उस महाकवि यहाँ पे कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक, और सचेतन चेतना वाला जीवित, रूपक मतलब उसकी तुलना करते हुए उसका पूरा एक तरह से प्रतीक बना के, बिंब बना के, जो हमने पहले बात की थी मानवीयकरण की, है ना, कि हम उसको जिंदा रूप में कल्पना करते हैं, नदी को भी, पहाड़ को भी, और यहाँ पे भी वो यही बात करें, कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूपक बहुत पसंद था, वहाँ आप बारिश करते हुए जाना। एक उदाहरण और देते हैं फिर इसके बाद नागार्जुन, वो क्या है कि जैसे बेटियों की कल्पना की, प्रेयसी की कल्पना की, और फिर वो कहते हैं कि एक रचनाकार का और उदाहरण लेते हुए, वो कौन है? वो है काका कालेलकर। काका कालेलकर कौन थे? काका कालेलकर हमारे स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी थे, खास तौर से उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बहुत कार्य किया, उनके सहयोगी रहे, और उन्होंने क्या कहा? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा कि ये हमारे जन की माताएं हैं, हमारी देश दुनिया की माताएं हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेषी मतलब प्रेमिका की भावना भी करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और धागा भी है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो क्या है कि माँ है, बेटी है, प्रेषी है, और एक और धागा है, वो क्या है? बहन। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी भावना ऐसी ही हुई, थोलिंग जैसा मैंने बताया था, ये तिब्बत में जगह है और नागार्जुन वहां गए और हिमालय को पार करते हुए वहां जाना पड़ता है। थोलिंग में जब वो थे तो एक दिन उनकी तबीयत, मन थोड़ा उचाट हुआ, परेशानी हुई, तबीयत ढीली हुई, सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। और फिर नागार्जुन एक कविता वहाँ पे लिखते हैं आपके लिए, और अपनी अभिव्यक्ति है, उनकी अनुभूति है, और वो यहाँ पे नदियों को, खास तौर से सतलज नदी को, बहन के रूप में संबोधित कर रहे हैं। और वो कविता क्या है, बड़ी सुंदर छोटी सी प्यारी सी कविता है, जैसे हम इसको पढ़ें। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन, मेरा मन खुश हो गया, हटा खुमारी, जो आलस्य था, जो कष्ट था, खुमारी जो थी वो दूर हो गया, इसलिए जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पे कुर्बान हूं। और तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, वो बेटी की तरह से हिमालय देखता है नदियों को। प्रकृति नटी, अर्थात जो प्रकृति रूपी नटी है, उसके चित्रित पट पर जो उसकी सृष्टि है, जो उसका चित्रण किया जाता है, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, उसके ऊपर सुंदर मानो की छाप लगी हुई है हिमालय की, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। मित्रों, देखा आपने कि नागार्जुन ने हिमालय को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को किस किस रूप में चित्रित किया। कभी वो उनको बेटियां कहते हैं, कभी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, कभी माँ के रूप में देखते हैं, कभी बहन के रूप में देखते हैं। और आप और हम सभी चाहते हैं कि हम प्रकृति का आनंद लें और इनको देखें, अनुभव करें, तभी हम अपनी रचना भी कर सकते हैं, जैसे नागार्जुन ने की। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जिस भी प्रकृति के अंश को या कोई भी अनुभव जो हम देखते हैं, समझते हैं, उसको देखें और लिखने की, बोलने की कोशिश करें, तो ये जो पाठ है वो हमारे काम का होगा। और एक सवाल और एक जिज्ञासा बच्चों की ये भी रहती है कि जो पाठ के पीछे अभ्यास दिया रहता है, उसको हम थोड़ा आपसे बातचीत करें। इसमें कोई खास या कहिए विशेष उलझाव वाली बात नहीं है। प्रश्न अभ्यास हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि वो पाठ को पहले से ज़्यादा खोलें, उस पर और विस्तृत बातचीत हो। जो कोई बिंदु हमारा पाठ में छूट जाता है, हम उसको अभ्यास के माध्यम से कहते हैं, और उसके पाठ के साथ साथ पाठ के आगे की जो बातें हम चाहते हैं कि उसमें शामिल हों, वो भी हम लोग पाठ और प्रश्न अभ्यास के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगर आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको इसके पीछे दिए गए जो प्रश्न अभ्यास है वो भी सहज लगेंगे। जैसे कि आपने इसमें एक सवाल है, मान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को उसकी क्या विशेषताएं हैं, काका कालेलकर ने लोकमाता क्यों कहा है, ये सारे सवाल पाठ में आप जब पढ़ेंगे उस हिस्से में आपको दिखाई देंगे। बातचीत में भी हमने उनको थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, उस पर विस्तार से बातचीत करने की कोशिश की। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी कविताएं दूसरे कवियों की हैं, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता है हिमालय, और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय, जयशंकर प्रसाद की एक कविता है हिमालय के आंगन में। आपको अगर अपनी पुस्तकालय, लाइब्रेरी, इंटरनेट पर, ऑनलाइन माध्यमों पर, जहां कहीं पर भी उपलब्ध हो, वो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात भी बता दूं कि NCERT CIET ने नागार्जुन के ऊपर एक फिल्म भी बनाई है, आप वो फिल्म भी देख सकते हैं, आप नागार्जुन के जीवन को अनुभव करेंगे। इसके अलावा एक बात हमारे लिए थोड़ी सी बातचीत की ये हो सकती है कि एक सवाल आता है कि कुछ व्याकरण के बिंदु हम लोग डिस्कस करें, और वो इस पाठ के पीछे जो भाषा की बात है उसके माध्यम से हमने व्याकरण के कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि आप इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे हमने संज्ञा किसी पहले पाठ में की, छठी में की, और अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने विशेषण और विशेष्य की बात की है, अर्थात विशेषण जो किसी भी चीज की विशेषता बताए, जैसे कि संज्ञा है, स्वरनाम है, और संज्ञा स्वरनाम क्या है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, उसका नाम है या फिर इनकी जगह जो इस्तेमाल होता है उसकी जो विशेषता बताता है। हमेशा कोशिश करिए कि जो भी व्याकरण का बिंदु आप बातचीत करना चाहते हैं वो पाठ की सहायता से करिए, उसका संदर्भ लेके करिए, कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो बात हमें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि इसी पाठ में बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि वो संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाले हैं, जैसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे उसमें दिया हुआ है, मान लीजिए वर्षा है, वर्षा के आगे क्या लगा हुआ है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, अर्थात वर्षा की विशेषता बता रहा है ये। जैसे इसमें एक शब्द आया जंगल, जंगल कैसा है, घना है, वो उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण है। नदियां हैं, नदियां कैसी हैं, चंचल है, तो वो इसी पाठ के माध्यम से आप देखिएगा संज्ञा और उसकी विशेषता बताने वाले जो विशेषण है, अर्थात हम पाठ की सहायता से ही व्याकरण के बिंदु भी चर्चा कर सकते हैं। एक उदाहरण इसमें और भी है जिसकी चर्चा मैंने पाठ में भी की थी, वो था कि कुछ चीजों के, कुछ शहरों के, कुछ जगहों के पुराने नाम हमने लिए हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण आया था, उसी वेत्रवती नदी के लिए ही बेतवा नदी आया था और इसके पीछे भी कुछ नाम दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे रोपड़ है, रोपड़ के लिए उसका मूल नाम एक सूची दी हुई है, उसकी सहायता से रूपपुर है। जैसे बनारस है, बनारस को हम आज वाराणसी कहते हैं, अजमेर को अजमेर है, अजय मेरू कहते हैं, और बहुत सारे उदाहरण है। आप पाठ की सहायता लीजिए, धीरे धीरे पाठ को पढ़िए, समझिए एक बार दो बार, ऑडियो की सहायता लीजिए, वीडियो की सहायता लीजिए। जो हाँ, एक चीज और मैं कह दूँ संक्षेप में ही, वो ये है कि जो कोई नया शब्द आए, जैसे इसमें उपतक्याय था, थोड़ा लगता है कि सर शब्द था, संभ्रांत था, तो इस पाठ्य पुस्तक के पीछे एक शब्दकोश भी दिया हुआ है। आपको शब्दकोश डिक्शनरी देखनी भी आएगी, समझनी भी आएगी, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, और आपको जब चीजें समझ में आएंगी तो आप पाठ का पूरा आनंद ले पाएंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, सुने, देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: Billy, Billy, Billy, Billy.
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी बूंद से भिंडी तक। तो आइए सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती कड़ी बूंद से।

0: ठीक करेंगे तुझे।
1: इधर ओ मम्मी क्या मम्मी आप
0: इधर
1: क्या है
2: रुको भाई ये क्या हो रहा है। अरे विवेक आज तो हमारे घर में ही सब पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। क्या हो रहा है
3: ना, समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ये खाने की प्लेट लेकर की दौड़ लगा रही है।
2: वसुधा क्या हुआ
0: तुमको? हंसी आ रही है। हाँ सो आप लोग इस मानव ने ना सुबह से मेरे नाक में दम कर रखा।
2: अरे वसुधा मानव का तो काम ही है कि इस वसुधा यानी धरती को तंग करना। धरती बेचारी उपकार करे और ये उसे परेशान। तो भाई मानव बात क्या है?
4: अरे पापा जब से आप और विवेक भैया सोसाइटी की मीटिंग में गए हैं तब से मम्मी और मानव जुटे पड़े हैं।
2: अच्छा
4: मम्मी बेचारी इसके पीछे पीछे भाग रही है और ये कभी सोफे पर तो कभी बिस्तर पर। मैं तो अभी अभी मदद करने पहुंची कि आप आ गए।
3: मानव मम्मी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको पीटी ऊषा बनना पड़ा?
0: बंद करो ये। हंसी की बात नहीं है ये मानव तो रोज जिद्दी का जिद्दी होता जा रहा है। कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना। अब इसे पूछ कर भिंडी और पराठे बनाए मैंने। अब इन लाड साहब को भिंडी नहीं खानी पराठे नहीं खाने।
2: ओ तो मानव जी के खाने पर नखरे शुरू हो गए हैं।
1: पर पापा मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है।
4: अरे भिंडी क्या, इस मानव को तो लौकी टिंडे तोरी काशी फल कुछ भी पसंद नहीं है। हाँ बाजार का अटरम शटरम जरूर पसंद है।
1: नहीं।
3: पर मानव ये हरी सब्जियाँ फल आदि तो सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं।
1: ओहो भैया मैडम भी यही कहती हैं। पर स्वाद कहाँ से लाओ?
0: स्वाद तो एक थप्पड़ में आ जाएगा मानव।
2: अरे वसुधा वसुधा वसुधा प्लीज क्या कर रही हो? अच्छा तो मैं जो कुछ समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हमारे मानव जी अब चटोरे हो गए हैं और अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के बजाय उनके लिए स्वाद ज्यादा मायने रखता है। पर बेटा मानव स्वाद तो भिंडी में भी है और साथ में पराठे हो तो भाई अब
1: मजा।
2: हमारे लिए भिंडी पराठे लगा दो ना भाई।
0: वो तो मैं लगा ही रही हूँ पर इस मानव का कुछ तो करो ना, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अब नहीं कहेंगे आप जैसा पिता वैसा पुत्र कहिए ना। कहाँ से ये सब सीखता है ये लड़का? मानव कभी देखा है अपने विवेक भैया को? कभी देखा है अपनी सृष्टि दीदी को ऐसे जिद करते हुए? रोज नए शौक रोज नए शौक।
2: और कभी पापा को देखा है जिद करते हुए?
3: पापा अगर मानव हमारे साथ इस्लाम अंकल का लेक्चर सुन लेता तो शायद खाने की क्या किसी भी बात पर जिद नहीं करता।
1: अच्छा ऐसा क्या बताया था इस्लाम अंकल ने?
3: ऐसी बात।
2: अरे बेटा अभी आने ही वाले हैं वो हमारे यहाँ, उन्हीं से पूछ लेना।
1: हाँ हाँ। पर पापा इस्लाम अंकल तो समुद्र वायुमंडल वगैरह की बातें करते हैं, इसका भिंडी से क्या संबंध?
3: अरे मानव इस भिंडी का क्या तुझसे क्या मुझसे सबसे संबंध है?
1: है? पर वो कैसे भैया?
3: मानव वो तो तुझे इस्लाम अंकल ही समझा पाएंगे।
0: हाँ और उनकी डांटे तो तुझे अच्छी तरह याद भी रहती है। आने दे उन्हें, सारी करतूतें बताऊंगी तेरी।
4: ओ, लगता है इस्लाम अंकल आ गए।
5: क्या हाल है बेटा सृष्टि?
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते भाई साहब।
1: नमस्ते भाई साहब।
5: भाई साहब ये मेरे मित्र डॉक्टर राजीव।
6: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते
6: नमस्ते भाभी जी।
1: नमस्ते भाई साहब।
5: ये कृषि वैज्ञानिक हैं और आजकल बदलती जलवायु का विभिन्न पौधों और मिट्टी पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।
1: आइए भाई साहब आइए, मैंने बस खाना अभी लगाया ही है। आइए डॉक्टर राजीव आप भी आइए। आइए ना।
2: आइए आइए सब।
5: और डॉक्टर राजीव एक मिनट, ये विवेक ये सृष्टि और ये हमारा मानव।
1: नमस्ते
6: नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो
2: आ जाओ खाना खाते हैं।

0: अब मदद इसराइल से कांटेक्ट किया है, इससे पता
1: खाना तो बहुत ही बढ़िया बना,
2: कितना
1: मजा आ गया।
0: मक्का डिफेंस पैक को लेकर भी स्वाभाविक सवाल उठता
2: है, लीजिए भाई साहब
0: ऐसे वक्त पर
1: बस भाई अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पर आप ना थोड़ा इस मानव को समझाइए, घर का खाना तो जैसे इसे खाने को दौड़ता है।
1: मानव ये सब क्या है,
3: हमारे मानव को भिंडी नहीं पसंद?
4: कमाल है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है।
5: भाई पसंद तो हम सबको है डॉक्टर राजीव, पर हमारे मानव को तो ये सब सब्जियां दालें सब पालतू ही लगती हैं।
6: अंकल मैंने मानव से कहा है कि आप भिंडी की अहमियत अच्छी तरह से बता पाएंगे, तो उसे लगता है कि सागर महासागर और वायुमंडल की बातें करने वाले वैज्ञानिक का भिंडी से क्या वास्ता।
1: अरे भाई मानव, इन महासागरों वायुमंडल का तो सभी से वास्ता है।
0: गठबंधन के प्रवक्ता
1: मैंने कहा था कि मुझसे हर बार चार रोचक सवाल पूछना, कुछ सवाल सोचे?
3: वो सोच रहा हूँ अंकल,
4: चलो तुम सवाल सोचो, तब तक हम सारे महासागर और वायुमंडल का चक्कर भी बताते हैं, और हाँ भिंडी का भी।
3: इस्लाम अंकल, मानव तो आपसे वैसे भी बहुत डरता है, मम्मी तो बस चाहती है कि आप उसे इन सब्जियों से प्यार करवा दे, बस उनकी सारी परेशानी खत्म।
1: अरे सृष्टि बेटी, भिंडी की अहमियत समझने के लिए पहले महासागरों वायुमंडल भूमि के आपसी संबंधों को तो समझे। आत्मानव
3: जी
1: पिछली बातें कुछ याद है तुम्हें?
3: हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है।
5: इस्लाम भाई
0: नहीं कि
5: ब्रजमोहन जी और अल्पराज जी नहीं आए,
1: वो आज जरा कुछ अन्य काम में व्यस्त हैं, कल आएंगे।
4: अच्छा मानव, ये तो तुम शायद जानते ही हो कि सूरज ही हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है।
1: भाई राजीव, ये सब तो पिछली बार इन्होंने जाना समझा था। अच्छा बच्चों ये बताओ, सूरज से हमारी दूरी कितनी?
6: अंकल करीब 15 करोड़ किलोमीटर।
4: अरे वाह विवेक,
6: थैंक यू।
1: हाँ तो भाई, इतनी दूरी से सूरज की कुल ऊर्जा का 15 अरबवां भाग ही हमारे इस शानदार ग्रह तक पहुंच पाता है।
3: अंकल इतनी कम ऊर्जा?
4: हाँ सृष्टि, दूसरा कारण है कि विश्व की इतनी ऊर्जा भी इसके विभिन्न जीवन को गर्मी और रोशनी देने के लिए पर्याप्त है, और इसके साथ साथ दूसरा ऊर्जा भर में वायुमंडलीय और महासागरीय गतिविधियों को भी निर्धारित करने में भूमिका निभाती
1: है। हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा द्वारा चालित दो मुख्य प्रणालियां इस धरती पर, पहली जीवन प्रणाली और दूसरी महासागर वायुमंडलीय प्रणाली, समझे?
4: देखो बेटा, इन दोनों प्रणालियों में जहां ऊर्जा का तो बाहरी अंतरिक्ष से आदान प्रदान होता है, परंतु किसी तरह का द्रव्यमान बाहरी अंतरिक्ष से नहीं आता जाता, यानी दोनों ही प्रणालियां ऊर्जा को छोड़कर सभी कुछ इस धरती से पाती हैं।
6: पर अंकल, सौर ऊर्जा और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली के कारण ही पानी वायुमंडल से महाद्वीपों की यात्रा तय करता है ना?
1: अरे वाह शाबाश विवेक। और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली एवं ठोस भूमि के बीच आपसी रिश्तों के चलते ही चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी के लिए सामग्री बनती जाती है।
4: देखो बच्चों, पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में जीवन ने अपनी पहुंच बनाई है, जो वायुमंडलीय गतिविधियों द्वारा जल संचरण और ऊष्मा के वितरण द्वारा ही संभव हुआ है।
1: समझे कि नहीं आप लोग?
3: जी जी अंकल।
1: अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा क्या होती है?
3: ऊर्जा यानी हमारे कार्य करने की क्षमता।
4: बिल्कुल ठीक सृष्टि, ऊर्जा अपने रूप बदलती है, और ऊर्जा अगर एक से दूसरे में ना बदले तो कोई भी गतिविधि ना हो।
3: लेकिन अंकल ये ऊर्जा के रूप कुछ समझ में नहीं आए।
4: अब देखो मानो, यहाँ एक बिजली से जलने वाला बल्ब है, इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है, कि इस प्रक्रिया में बनी ऊष्मा अनावश्यक है, पर लगभग ऊर्जा के हर बदलते रूप में ऊष्मा किसी न किसी रूप में निकलती ही है।
1: असल में ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न पैदा होती है न खत्म,
4: और वो रूप बदलती है। इसी तरह के कई ऊर्जा के बदलाव महासागर वायुमंडलीय तथा जीव प्रणालियों में होते हैं।
6: लेकिन असली अंकल, सूरज से ऊर्जा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही आती है ना?
4: हाँ विवेक, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में अलग अलग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं। कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों में उच्च ऊर्जा होती है और पराबैंगनी किरणें। ये किरणें जीवों के लिए घातक होती हैं। गामा और एक्स किरणें जहाँ जैविक अणुओं को तोड़ देती हैं, वहीं पराबैंगनी किरणें सनबर्न यानी धूप ताम्रता करती हैं।
1: परंतु हम भाग्यशाली हैं।
2: वो कैसे?
1: क्योंकि धरती के अलावा मौजूद वायुमंडल इनमें से ज्यादातर किरणों को सोख लेता है।
0: कब जाएगा ये?
1: लंबी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जैसे रेडियो और इंफ्रारेड तरंगें भी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती हैं। पर फिर भी प्रकाश तरंगें धरती की सतह तक पहुंचती हैं।
4: अब कौन से इसके परिणाम स्वरूप दो मुख्य प्रभाव देखने में आते हैं। पहला, वायुमंडल दो मुख्य जोनों में गर्म होता है। उत्तरी वायुमंडल जिसमें ओजोन परत होती है वो ज्यादा ऊर्जा वाली तरंगें छोड़कर गर्म हो जाता है, जबकि निचली परत धरती की सतह से टकराकर वापस लौट रही तरंगों को अवशोषित करने के कारण गर्म होता है।
2: जी पापा,
0: मेरा आकलन कहता है कि 2030 तक विश्व युद्ध
1: धरती की सतह से वापस लौटी तरंगों से दोबारा गर्म होने वाली वायुमंडल की निचली परत में अत्यधिक संचरण होता है, जिस कारण वायुमंडल के 10 से 18 किलोमीटर निचली परत में काफी बदलाव होते हैं, जिससे धरती में मौसमी परिवर्तन होते हैं और वायुमंडल एवं सतही चट्टानों में परस्पर गतिविधियां होती हैं। जैसे चट्टानें टूटकर मिट्टी के कणों में बदलती हैं और फिर इन्हें हवा, पानी और बर्फ अलग अलग स्थानों पर ले
6: जाती है। धरती पर दूसरा प्रभाव क्या देखने में आता है?
4: देखो बेटा, दूसरा प्रभाव दिखता है धरती पर मौजूद वनस्पतियों पर जो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
6: अच्छा।
4: और फिर इन पौधों के द्वारा ये ऊर्जा अलग अलग जीवों में पहुंचती है,
2: खाद्य श्रृंखला के द्वारा। है ना अंकल?
1: शाबाश बेटी। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि कैसे ताप में भिन्नता और घनत्व और दाब में भिन्नता पैदा करती है, और घनत्व और दाब की भिन्नता के कारण ही हवा और महासागरों में हलचल प्रवाह गतिविधियां बनती हैं।
4: उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तथा महासागरों का प्रवाह मौसम की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: हाँ राजीव अंकल, इस्लाम अंकल ने बताया तो था कि कैसे महासागरों की सतह पर बहने वाली हवा लहरें तो पैदा करती ही है, साथ साथ ये हवा पानी के तापमान के गुणों को भी अपने में समा ले।
1: तुम्हें तो बिल्कुल सब याद है।
7: उसको बहुत याद करवाता हूँ।
0: सारे के सारे
1: एक सवाल तुमसे पूछ लिया ना, बगले जागते फिर हो गए।
7: इसलिए तुमको लाए हैं।
1: अच्छा चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं
0: लॉन्ग टर्म में।
1: अच्छा, ये सारी प्रक्रियाएं महाद्वीपों के चारों तरफ और अंदर पानी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: आराम से जा सकता है।
1: इन्हीं के द्वारा महाद्वीपों तक सारी सामग्री के संयुक्त प्रणाली के रूप आती जाती है।
2: तारीख नहीं है पर अंकल, प्लान नहीं, ये सब नहीं कुछ आ गया और चला गया पर भिंडी अभी तक नहीं आई।
1: आएगी माना बेटे, भिंडी भी आएगी। अभी तुम ये तो समझो कि इस पूरी महासागर और वायुमंडलीय व्यवस्था को चलाने के लिए इंजन का काम सूरज की धरती पर पहुंची ऊर्जा ही करती है।
4: देखो बच्चों, वायुमंडल और महासागरों में बहुत ही रोचक फर्क उनके ऊष्मा के हस्तांतरण को लेकर। महासागरों में जहाँ सबसे ऊपरी सतह गर्म होती है और ये ताप नीचे की परतों की ओर जाता है, वहीं वायुमंडल में ताप धरती की ओर से लौटी ऊष्मा के कारण नीचे की परत से ऊपर की ओर जाता है।
1: पहले महासागर गर्मी सोखते हैं और उनमें ज्यादा गर्मी सोखने की क्षमता भी होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, जीवाश्म ईंधन के जलाने के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में से 30-50% तो महासागर ही सोख लेते हैं।
6: ऐसे तो ये महासागर कार्बन के बड़े भंडार होते हैं।
1: महासागरों वायुमंडल के आपसी ऊष्मा के लेन देन और गर्म से ठंडे इलाकों की ओर गतिविधियों के कारण ही मौसम बनते हैं। पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पता है पूरे वायुमंडल में जितनी ऊष्मा है उतनी तो महासागरों के ऊपरी 10 फीट में ही समाई रहती है।
4: बेटा महासागरों में विभिन्न जीवों के लिए इस धरती पर करीब 99% जगह उपलब्ध है और 90% महासागर में रहने वाले जीव उन गहराइयों में रहते हैं जहां अभी मानव की पहुंच भी नहीं है।
2: पर अंकल ये भिंडी कहां रह गई?
1: मानव लाखों करोड़ों वर्षों पहले इस खौलते उबलते ग्रह में पानी की एक बूंद बनी और धीरे धीरे कई बूंद जो इसी ग्रह में कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनी और फिर जो महासागर बने
4: और इन्हीं बूंदों ने बरसकर ग्रहों को ठंडा किया। महासागरों में जीवन पनपा।
1: करोड़ों वर्षों से पानी की मात्रा इस ग्रह पर लगभग एक जैसी बनी हुई। ये पानी वायुमंडल की यात्रा करता हुआ फिर महासागरों पर बरसा और फिर वायुमंडल में वाष्पित हुआ, जिनकी जरूरत फिर कभी किसी महाद्वीप पर बरसा।
4: इन्हीं महासागर वायुमंडल की गतिविधियों के चलते मिट्टी बनी
0: इस तरीके से
4: जिसमें कई रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी।
0: आप जो है
4: फिर कभी एक जटिल बीज बना जिसमें पनपने की ताकत
1: और फिर उस बीज पर इन सारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी एक पानी की बूंद गिरी जिसने उस सोए बीज को जगाया। वो फला फूला और पौधा बना। शायद तुम्हारी इस भिंडी का पहला पौधा फिर कई बीज बने और फिर असंख्य भिंडियां।
4: और बेटा क्या पता जो भिंडी तुमने आज खाई उसमें वही करोड़ों वर्षों पहले बने पानी की वही पहली बूंद हो। उसमें तपती धरती के ठंडे होने में बिखरी और फैली वही ऊर्जा हो
1: और आज वही ऊर्जा तुम में होती हुई फिर आने वाली पीढ़ी के लिए शायद कोई नया रूप ले ले। समझे?
2: समझ गया अंकल। ऐसे ही हर चीज भी प्रकृति की करोड़ों वर्ष की मेहनत का नतीजा है।
6: हम इस मेहनत को बेस्वाद कहकर नकार नहीं सकते।
2: तो समझे महासागर वायुमंडल की प्रणाली का हमसे और भिंडी से रिश्ता? हाँ दीदी।
1: मानव
2: जी
1: कल मैं तुम्हें महासागरों में बहती नदी के बारे में बताऊंगा।
2: सागर में नदी? वो कैसे अंकल?
1: अरे भाई वो तो कल बताऊंगा। लेकिन आज तुमने फिर कोई सवाल नहीं पूछा।
2: अरे अंकल आज तो भिंडी के सवाल में ही इतना उलझ गया था कि मैं क्या पूछता, लेकिन कल जरूर पूछूंगा।
1: चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे।
7: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
2: और मम्मी कल मैं स्कूल ना भिंडी लेके जाऊंगा।
8: कल सुबह मैं ताजी भिंडी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए।
5: चलो भाई मानव ने प्रकृति की मेहनत की कुछ तो इज्जत की। वसुधा अब तुम्हारी कोई भी सब्जी बेकार नहीं जाएगी।
8: और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस्लाम भाई साहब का।
7: भाई
1: अगर देखिए अगर आपने इतना ही शुक्रिया करना है तो एक कप चाय पिला दी और देखो गरम गरम पकौड़े भी।
8: अभी खाना खाया आप लोगों ने भाई साहब?

0: लोग जिस धरती पर रह रहे हैं उसका वातावरण जीने लायक बनाए रखने के लिए सबको मिलजुल कर नई तरह से सोचना होगा।
1: हाँ, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी और दुनिया भर में धरती की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में ठीक से समझ सकें।
0: बिल्कुल।
1: इस सीरियल की परिकल्पना के बारे में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर वीबी कांबले क्या कहते हैं, सुनिए।
2: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप, या कहें कि जीवों की एक प्रजाति, अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना

कहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साय में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
5: एफएम। आइए हम सब मिलकर जल बचाते हैं। आप जब भी ब्रश करें एवं दाढ़ी बनाएं, सिंक में बर्तन धोएं, तो जरूरत न होने पर नल हमेशा बंद रखें। ऐसा करने से हम 6 लीटर हर 1 मिनट में पानी बचा सकते हैं। नहाते समय भी बाल्टी से पानी को व्यर्थ न बहाएं। जहां कहीं भी नल लीक करे उसे तुरंत ठीक करवाएं, नहीं तो उसके नीचे बाल्टी या कटोरा रखें और फिर उस पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। सुनो शारदा 90.8 एफएम और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM सुनो शारदा।
0: मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लाविटर मेहरबा ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो 10 या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है। अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी

0: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिससे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियां देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
5: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं, आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
2: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
2: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
3: अरे तारा ये क्या?
2: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी
5: जल रक्षक
4: खुद निगरानी।
2: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
2: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
2: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन अब हम खेलें।
1: ओके। तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: Sí.
1: ¡Ay! ¡Chelo, chelo! ¡Apá se puste! ¿Ah?
0: Ok.
1: ¡Apá!
2: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
3: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
2: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
3: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: अच्छा।
1: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
2: नो नो नो नो।
3: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है?
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
5: चलो।
1: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो। आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है? क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें? ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव।

0: खुशबू के साथ।
1: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
2: मैं इसे ऐसे ही देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है,
1: तो रेडियो भी बदलेगा।
2: और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, अगर बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
1: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
3: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
1: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
3: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं उस चीज को देखने में, और किस तरह से हमें देखना है ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
1: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाते हैं लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
3: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
0: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर।

0: ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
2: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हेलो मेरी बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओह, मुझे बुखार हो गया है।
1: बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से
0: बाय बाय।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
6: मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कृपया आप रास्ता देंगे?
7: प्लीज।
6: थैंक यू।
8: वर्षा जी, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो।
6: तुम्हें कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चों कौन हूँ मैं।
8: अली का शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पाँच साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।